तहीं प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर दिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साह जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहदे पासे नूं सिजदा करदे हां, पर अज पीर भीखण साह बार बार सिजदा कर रहा है। जो नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करते हाँ, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेरे ना ही दूर। जो एहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साह कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन, तुर पे तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे

कहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद बिन सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक सच सुवार नहारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरे मर जाऊं। आखण औखा सच्चा नाओ, साचे नाम की लागे भूख।

जात, खसुम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तास।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सतसंग।

तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुझ जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हरे को पुरख समाना।

पापे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्याव है हर त्याव है तुद जी जन ना जे हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ।

जी तू निश्चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सोई तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा।

जिसनो तू जानाही सुई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब हुए तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वे कह जाण है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेत सर्वरण।

एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हो जति सती नहीं पड़या,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौकई, हमरी करो हाथ दै रचा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काबहु, आप हाथ दै मुहे बचावहु। सुखी बसै मोरू परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन कौ आसंगरिय। पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा। राख ले हो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूठियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी। शिव कन को

पछानत चीटी ते कुंचले असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जीते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कच भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम पाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख

मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असुपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ सब तू हे बखान्यो। दोहरा

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया सब दूता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

क्या नाही कर तेरै। करता तेरै सब किछु है, जिस देहि सु पावै। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु। जिस दिया इह वडियाइया,

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहिया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र,

श्लोक महल्ला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाउ नित्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाउ सतगुर से तीरते आओ।

Moloch de Chernovitz, Ardas Vinti, Metam di Barnapu Hemir Swami, Metodage Ardas Mehor Tauna Hindi Spekro Binanti Mira Dukh Sukh Tudhi Pase So Inixiva Pravan Kuni Huya Pulan Chukadi Kimakni. Aho Agli Program कथा दे सरण करिए गुरु कर दे वजीर सत्कार योग्यानी नवनीत सिंह जी उन्हा पासो तन तन साहिब श्री गुरु गुरु साहब जी महाराज जी दी चल रही गुरबाणी दी लड़ीवार विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरण करिए दस लोग फतेह प्रवान करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की

हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलहु गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानहु, हर हर कथा निराली। जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। ना हों जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ, शलोक महला तीजा। बाबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार। मेघ नो फुरमान हुआ, वर्षहु कृपा तार।

गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबीहा एव तेरी तिखा न उतरे जे सौ कर है पुकार। नदरी सतगुर पाई है

विचह जाए विकार। पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुरहों खुआया तिन मुख नाही नाम न तीरथ नाया हथी सिर खुहाए न पद कराया कुचल रह दिन रात शब्द न पाया तिन जात न पत न कर्म जन्म गवाया मन जूठे वे जात जूठा खाया।

मिट गए बैर भये साबरीन। अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बेकारती रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ थारी, नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बाहुर न होवै आवन जान। हर धन खाट चलै जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए। खेम सांत रिद नाव निद, बुद्ध ज्ञान सर्वता है सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इस्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ए फाल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिसराम। कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए। जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे सुमानी। दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म। सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी।

दूर कथना कथि नया वैतोट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर।

मन कुए मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन हुए जिको मन जाने मन कुए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पातशों पर घट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन हुए जिको

मन्ने नानक पवहे न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंची पावह दरगह मान पंची सोह दर राजान पंचा का गुरेक त्यान

संतोख थाप रखिया जिन सूत जेको बुझै होवै सचियार तब लै उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार।

तिसते हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावे एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पक्षार, असंख मून लिवलाए तार। कुदरत

शंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाख काहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जोत दुपावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लोह, असंख कह सिर भार होय, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन्हें लिखे ते सिर नाहे, जिव फरमाए तिव तिपाहे, जीता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही कोताओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जोत दुपावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन देहे, पानी धोतै उतरस खेहे, मूत बलीती कपड़ होए, दे साबुण लईऐ उह धोए, भरिए मत पापा कै संग, उह धोपै नावै कै रंग,

पौन पानी बह संतर गाव है राज है धर्म दुआरे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गाव है इंद्र दासन बैठे देवते आदर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन उपाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावह जूद महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर रखे तारे से तुदनु गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

सुख है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अभा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फ्रीक है, पुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमानी समस्ती निदानी, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी प्रमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाती समस्ती विभूते, कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अपरे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तु निशनानंग, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्द अर्द अंगूगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अचिदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तोपराजी समस्तस्ततामंग तीरा जोर चाचरी चांद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचांद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमानी समस्ति निदानी नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साजे नमो साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्यं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग अलकर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आदि रूपनाद मूरत जौनपुर कपार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व काल सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिशाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख आद गुरु कुदार मूर्त जौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूं न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सुदै मानता ही एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जाने जे भेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जाने के जीव तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिर चत्र चक माने पुरतीन लोग चौदह के विकह जग जा पीजे जाप आदेवनाद मूर्त तप्य सब जीता परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुर कपार सर्व विश्वरचियो स्वयं भवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत लख अपेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाव गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमी गण सत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग नातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाकर नित भक्त नित कोट सिमृत प्रण शास्त्र
नाया वही वचित मद पार छंद्व प्रसाद गुणगन उदार में मां अपार असन भांग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाथ

අනරංකාල අනකාල් අනපුූතංගා පාපංගත් මෙතපාර ගුණගන් උදාර්මුණගන් ප්‍රනාම් නිර්පැණිකාම් අදදුත් ප්‍රචන්්ඩව මෙතිකත කණ්ඩු අලිශ්‍ය කරමු අදෘශ්‍ය තරමු සර්භා පරණඩ අන්ඩන් පඩ්ඩය චාචරී චන්තුව පරසාද ගෝබින්දේමු කන්දේ උදාරේ අපාරේ හරියං කරියං නිර්ණාමේ අකම්මේ පුජං ප්‍රයාචන්ද චතරචක්‍ර කර්තා චතරචක්‍ර හර්තා චතරචක්‍ර දානේ චතරචක්‍ර ජානේ චතරචක්‍ර වර්තී චතරචක්‍ර පර්තී චතරචක්‍ර පාලේ චතරචක්‍ර කාලේ චතරචක්‍ර පාසේ චතරචක්‍ර වාසේ චතරචක්‍ර මාන්‍ය චතරචක්‍ර දානේ චාචරී චන්දන සුත්‍රය න මිත්‍රය න පර්මං න පිත්‍රය न कर्मं न काय अजन्मं जाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्रय प्रतिशय अदिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चन्त्व प्रसाद कथते किया चिज देशय किया भिज भेषय किया गंज कर्मय किया पंज भरमय किया भिज लोकय किया दित सोकय के अवतूत वर्णय के विभूत करणय कि राजं प्रभा है कि धर्मं तुजा है किया सुख वर्णय के सर्वा अपरणय कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि बर्मं स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आदि अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रं बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रिजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक व्यैव है कि गै भूल गैव है कि फुल गुनाह है कि सा अनुसा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी ध्यान दे कि राजक रहीम है कि कर्मं करीम है के सर्वं कली हैं के सर्वं गली हैं के सर्वत्र मान्य हैं के सर्वत्र दान्य हैं के सर्वत्र गौण हैं के सर्वत्र पौण हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कली मैं कि परमं फही मैं कि अकल अलम मैं कि साहिब कलाम मैं कि हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम मैं सलीकत मुदाम मैं गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम मैं रुजुल निदान है हरीफुल अजीम मैं रजा की यकीन है अनेक कुल तरंग है भेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है अंगाध रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजे अगाधे शुभंग सुरभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है चिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है प्रतिफुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त स्वरूप है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद अपांग है अनांग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अभिख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते
अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सूत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाक शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है अमिशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दयांद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबान के साहिब किराए के नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमाम उल्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिशुल अरेख है हमेशल अपेख है जमीनुल जमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के जब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मद पार चंतु प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सुलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नाज मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग वसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिश विश पांड जल थल महंत दिश विश बेअंत अनुभव नाज त्रितर तुराज आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गातु अजिज न बातु अनचंज गातु अनरंज बातु अनटुट भंडार अनडट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जुगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विषम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से पर ते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा तप है कृता कृत्य अमृता मृत्य अमृता मृत्य करुणा कृत्य अकृता कृत्य धरणी त्रित्य मिथेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य मृता मृत है अजबा कृत्य मृता मृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निर्पनायक है सर्पायक है पपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वस है जस के जस है भुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास कास अगंज पंज लख अपक काल दयाल लेख भेख अनाम काम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमोनि नराग नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा।

सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को क्षय करता। श्री अस्तुज पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांचत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द भव निकट न तिन्नर के रह, ओ जो याकी एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय, अर्ध सह सुन तीन कही जय।

कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बेद कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो। दो वरा सगल

सचलख विडानी ताकी गत कही न जाय। कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र होवो, सचै सुनै नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नव नव नव नव नित दृष्टांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारै जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया। एहो साचा सोहिला साचै कर गावहु, गावो ता सोहिला कर सचै जिथै सदा सच त्यावहे। सचो त्यावहे जात दुभावहे गुरमुख जिन्ना बुझावहे। एहो सतसबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे। कह नानक सच सोहिला

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दशहरा।

0: भगत भंडारी परपुर रहया सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई आखण तोट न भगत भंडारी परपुर रहया सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: परम सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले गुरु दरबार की हाजरी पर रखे हो। सतगुरां ने कृपा की है पावन दीवाना की संपूर्णता से अज के इलाही दरगाही श्री मुखवाक बख्शिश किए हैं जो तनासरी राग अंदर साहिब सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दतार जी की रचना तो उच्चारण किए गए। संत रूप विच पावन शब्द सतगुरों ने अज हुक्म रूप विच बख्शिश किए हैं। गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस पावन शब्द अंदर परमेश्वर के नाम नूं ही सच्चा तीर्थ बयान किया है कि जिन्हां दे मन ने उस नाम रूपी तीर्थ दे विच डुब्बी लाई है वह नाम रूपी तीर्थ ही मन की मैल नूं मन के विकारां नूं धो सकता है। होर कोई तीर्थ नहीं जिस दे नाल मन की मैल उतर सके मन के विकार उतर सकन। सो सच्चा नहाना सच्चा तीर्थ गुरदेव पिता महाराज ने परमेश्वर के नाम नू ही बयान किया है। गुरु कृपा करे सबना नू दरों करों चढ़ दियां गल्लां बख्शिश करके नवाजन। आप संगत के चरणों विच बेनती है कि 23 अक्तूबर धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। 27 अक्तूबर श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब हैं। 3 नवंबर गुरगद्दी दिवस श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का आ रहा है। उस दिन ही गुरु हर राय साहब महाराज जी का ज्योति जोत दिवस है। 8 नवंबर दिवाली का दिन बंदी छोड़ दिवस है। 11 नवंबर गुरगद्दी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का दिहाड़ा आ रहा है। 14 नवंबर ज्योति जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी और 24 नवंबर प्रकाश श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी। आप संगतां दे चरणां विच बेनती है कि आप जी ने इन्हां दिहाड़ियां नूं अपने ध्यान विच रखना है। गुरु चरणां विच समय सिर हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने हन। समूह संगत दा धन्नवाद। आओ हुण अमृत बाणी आसा की वार दे कीर्तन दा समां होया है। सत्कारयोग भाई साहब भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला ते उन्हां दा जथा आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ेगा। प्यार सत हाजरियां भरीए भुला चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखल करो सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महल।

0: विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फ्रैजन तो विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिडह विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगह प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुजन पूरा पहाग महला पहला।
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैस अंतर कुदरत धरती

0: स्वस्थ तिस तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
1: लख ने किया चंगियाईया लख पुना प्रमाण लख तप ऊपर तीर्था सहज योग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।

तक पाहु कतिये बामण वते आए। कोई बकरारन खाया सबको आख पाए हो प्राणा सुटिए पी फिर पाई होर नानक तक ना टुटे जे तो।

पियो बुझो नहीं घट मह जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर

ढूंढत डोलह अंधगत अरचिनत नाही संत कह नामा क्यों पाई बिन भगतो भगवंत हर सुरीरा छाड़ के करहे आन की आस ते नर दूजक जाहेगे।

देख दिष्ट न हो लिव लागी सब त्रिपवन ब्रह्म सवाया अमृत रस पाए तिसना पहु जाए अनपो पद पावे अब गुवाए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया दृष्ट गोचर नाम अपारा यत रस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दी जय हर जपिय अंत न पाया अंतर नाम प्राप्त हीरा हर जपते मन मनते तीरा दुखट घट पो पंजन पाई पंजन पाई है बहुत जन्म न पाया भगत हेत गुर सब तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जपत जगत सवाया जिन जप जप्यो सत गुर मत वाके जम कंकर काल सेवक भगता के उत्तम संग गत मित उत्तम जग पौजल पार्थ राया यो पौजल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुबदा अंतर जरिया पंचमान ले जम को मारा गंगन अंतर तनक चढ़ाया साकत नार शब्द सुरत के उपाय शब्द सुरत बिना य जाय नान गुरमुख मुक्त परायण हर पूरा पूरा भाग मिलाया निरभउ सतगुर है रखवाला भगत प्राप्त गुर गोपाला तुन आनंद अनाद वाजय गुर शब्द निरंजन पाया निरभउ सो सिर नाही लेखा आप ले कुदरत है देखा आप अतीत अजूनी संभव नान गुरमत सो पाया अंतर की गत सतगुर जाने सो निरभउ गुर सब पिछाने अंतर देख निरंतर बुझे नत न मंडलाया निरभउ सो अब अंतर वसिया एहनिस नाम निरंजन रसिया नानक रा हर जस संगत पाया हर सहजे सहज मिलाया अंतर बाहर सो प्रभ जाने रह लिख चलते कर जाने ऊपर आद सर्ब त्यो लोई सच नानक अमृत रस पाया मारु महला पहला कुदरत करना हारे अपारा किसे का ना ही क्यों चारा जियो पाए रिश्क दे आपे सिर सिर हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़ा किसे आखां दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वरताय ताक सवाया जिसको मेले सुर समाये गुर शब्दी हर नाम ते आये नंद रूप अनूप गोचर गुर मिलिया प्रम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा संत सखाई चलन वारा मोह पसार निसंगी बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिस कुन करे गुर पूरा सब सब मिलाए गुर मसूरा नान गुर के चरण सरे हो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर कह हर दर गह जस गाया सात गुर मिले ता मैल बुलाए साची दरगह गत पथ पाए साकत ठोर नाही हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सतगुर समुंदो थाहा पावो नाम रतन तन लाहा बिख्या मर जाए अमृत सर नावो गुर सर संतोख पाया सतगुर सेवो संख न की जय आसा महिंद्र आसर ही जय संसा दुख मिनासन सेवो फिर बहु रोग न लाया साचे पावे तिस वडियाए कौन सदूजा ते समझाए हर गुरमूर्त का वर्तै नानक हर गुर पाया वाचे पुस्तक वेद पुराना एक बसुन सुनावे काना अजगर कपट कहो क्यों खुलै बिन सतगुर तत न पाया करै विभूत लगावै पसमै अंतर क्रोध चंडाल सुहोमै पाखंड कीने जोग न पाया बिन सतगुर लख न पाया तीर्थ वर्त नेम करह उद्याना जस संयम कथा ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाई है बिन सतगुर परम न जाया न्योली करम भयंग पाठी रेचक कुंभक पूरक मन हाटी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ गुर शब्द महारस पाया कुल देख रहे मन मान्या गुर शब्दी सब राम पछान्या नानक आत्म राम सबाया गुर सतगुर लख लखाया मारु सोले महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हुक्मी सजे सिष्टो पाई कर कर वे कह अपनी वड्याई आपे करे कराए आपे हुक्मे रह समाई हे माया मोह जग गुबारा गुरु बुझे को विचारा आपे नदर करे सो पाए आपे मेल मिलाई हे आपे मेले दे वड्याई गुर प्रसादी की मद पाई मन बहुत फिर बेला दी दूजे पाए खुआई है हो मैं माया विचे पाई मन में भूले पत गुवाई गुरमुखो वैसो नाय राचे साचे रह समाई है गुरते ज्ञान रतन गुरते ज्ञान नाम रतन पाया मन सामार मन माय समाया आपे खेल कर है सब करता है आपे दे बुझाई है सदगुर सेवे आप गवाए मिल प्रीतम सब सुख पाए अंतर प्यार भक्ति राता सहज मत बने आई है
ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੋਈ ਬੂਜੈ ਭਉ ਪਰਮ ਸਰੀਰ ਰੋਜਾਈ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਸਤਗੁਰ ਸੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਜਰਾ ਜਮ ਤਿਸ ਜੋਇ ਨ ਸਾਕੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਸਾਕੈ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸਾਗਣ ਜਲਾ ਸੰਸਾਰਾ ਜਲ ਥਲ ਜਲ ਜਲ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ ਮਾਨ ਮੁਕਟ ਔਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕਭੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਰਵਿਆ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੈ ਪਛਾਣੀ ਸੱਚਾ ਸਬਰ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ ਹੈ ਸਭ ਬੁਝੈ ਸੁ ਮੈਂ ਚੁਕਾਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸਹਿ ਮਨਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵ ਹੈ ਹੋਮ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਤੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਜੈ ਨਾਮ ਵਿਹੋਣਾ ਕਦ ਕਰ ਲੋ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੋਗ ਗੁਆਈ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੂਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣਾ ਕਿਸੋ ਨਾ ਸੁਝੈ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਕਰੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟੈ ਧੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸਤਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵਾਸਾ ਜਿਨ ਕਹੋ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੁਪਾਏ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ ਭੀਖਿਆ ਨਾਮ ਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਜਾਏ ਕੋਈ ਏਕ ਵਰਤੈ ਸਭ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੋਝੈ ਕੋਈ ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਮੈਂ ਵਰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਸਭਨਾ ਰੇਖ ਸਮਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧਾਰਾ ਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾ ਰਾਇਣ ਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਬਿਨ ਸਾਂਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪਾਸਾਰਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪੇ ਲਏ ਲਏ ਸੁਣ ਲਾਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਮਕਾ ਭਉ ਭਾਗੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਸੁਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਅਣ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਾਤਾ ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਸਬਦ ਚੀਨ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਇਆ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਨਾ ਬੋਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤੈ ਆਖੀ ਸੋਜੈ ਅਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਈ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਲਾਗਾ ਜਨਮ ਕੀ ਨਾ ਮੋਹ ਭਾਗਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਖਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਾਇਆ ਕੁਸੁਧ ਹੋ ਮੈਂ ਮਰ ਲਾਈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵੈ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ ਸਭ ਧੋਪੈ ਤਾਂ ਹੱਛੀ ਹੋਵੈ ਫਿਰ ਮੈਲੀ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਕਾਇਆ ਸੰਘਾਰੈ ਮਰ ਮਨ ਜਮੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ ਅੰਤਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜੋ ਸੁਪਨ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕ ਪੰਚਾ ਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਵਡ ਭਾਗੇ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਰਵੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਪੈ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਸੰਝਾਪੈ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਰਸਨਾ ਰਸ ਚਾਖੈ ਸਚ ਸੋਈ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਸਬਦ ਨਿਵਾਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਉਰ ਧਾਰੇ ਇਕ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨ ਜਾਣਾ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਕਿਨੈ ਨੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚਾ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਬੇਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਵੈ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਬਦ ਪਛਾਤਾ ਏਕੋ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯੁਗ ਯੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰਸਨਾ ਸਬਦ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਪਤ ਗਵਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਸੋਰਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਸਾ ਚਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੰਡਤ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ਘਰ ਜਲ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪੜ ਥਾਕੇ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਏਕ ਪਸੰਦ ਲਗਾਏ ਫਿਰੈ ਭੇਖ ਸਾਰੀ ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਨ ਮਾਰੀ ਅਣ ਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਭਰਮ ਭੇਦ ਭਰਮਾਈ ਹੈ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਟੰਬ ਮਹਾਇ ਉਦਾਸੀ ਸਬਦ ਮੋਹ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਅਣ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਪੈ ਭਾਏ ਭਗ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁਤਾ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਭਉ ਕੈ ਜਿਸ ਕੁੱਤਾ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋਡਾ ਅੰਤ ਗਇਆ ਪਛਤਾਈ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ ਬਿਨ ਨਾ ਆਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਵੈਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਕ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਨਸ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਬੂਝੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਭਉ ਜਾਈ ਹੈ
स्नान दान करे नि बुझे एक मरुआ मार मन है स्योलू जैसा चैसवरत करेंगी सच सब मिलाई हे आपे आपे सचे दे वड्याई आपे भाणे दे मिलाई आपे नंद करे मन वस्या मेरे प्रभु फरमाई हे सतगुर सेवा से जन साचे मनु सेव न जान काचे आपे करता कर कर वेखे जो भाव है त्यो लाई हे जुग जुग साचा एको दाता पूरे भाग गुर सब पिछड़ता सब मिले सो विछड़ा नाही नदरी सहज मिलाई हे हों मैं माया मैलक माया मर मर जम मैं दूजा पाया बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई मन दे को लिव लाई हे जो तिस पाव सोई कर सी आप ना किश हो सी नानक ना मिले वड्याई दर साचा पथ पाई हे मारू महला तीजा जो आया सो सब को जासी दूजे पाए बादा जम फासी सतगुर राखे से जन उभरे साचे साच सुमाई हे आपे करता कर कर वेखे जिसनो नर करे सोई जन लेखे गुरम ज्ञान ते सब किस सूझे ज्ञानी अंध कमाई हे मन मुख सहसा बोझ न पाई मर मर जम मैं जन्म गुआई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साच समाई हे तुंदा धावत मन पाया मनूरा फिर हो वह कंचन भेटे गुरपुरा आपे बख्श लाए सुख पाए पूरे शब्द मिलाई हे दुरमत झूठ बुरी बुरियार अवगणियारी अवगणियार कच्ची मत पीका मुख बोला दुरमत नाम न पाई हे अवगणियारी कंत न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साओ न जाने मूर्ख बिन गुर बूझ न पाई हे दुरमत खोटी खोट कमावे सीगार करे फिर खसम न पावे गुणवंती सदा फिर रावे सतगुर मेल मिलाई हे आपे हुक्म करे सब वेखा एक ना बख्श लय तुर लेखा अंदर नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई हे हो मैं तात मोहे रसलाई गुरमुख लाभ गुरमुख ले साची साई समाई आपे मेलाए आपे कर वेख बिन सत गुर बूझ न पाई हे एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे भागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई हे काल मार गुर सब निवारे हर का नाम रखे और तारे सतगुर सेवा ते सुख पाया हर का नाम समाई हे दूजे पाए फिर देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते भी करे न पाए बिन सतगुर सुख न पाई हे किसनो कही है जय आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरबान सुखदाता जो पावे ति वह चलाई हे आपे करता आपे भुगता आपे संयम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरबान मद सूदन जसदा हुक्म न मेटिया जाई हे सेवट भागी जिनी एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता एक था गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख भ्रम पो जाई हे गुरमुख हर जो एको जाता अंतर नाम सद पिछाता जिस देस होई जन पाए नानक नाम वडाई हे मारो महला तीजा सच सलाही गर गंभीर सब जग है ते सही कची है सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी हे सच्चा साहेब सची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आपे आए वसया घट अंतर टूटी जम की फासी हे केस सेवी तै के सलाई सतगुर सेवी सब सलाई सच्चे सब सदा मन उत्तम अंतर कमल परगासी हे देही काची कागद मिकदारा बूंद पवै बिन सब कहत न लागै बारा कंचन काया गुरमुख बूझै जस अंतर नाम निवासी हे सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच अधारा सता तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी हे हो तिन बलिहारी जो साचा लागे हर गुण गावे अंदन जागे साचा सुख सदा दिन सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी हे हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा पूरे भाग सब सच दिखाया सच्चा नाम निवासी हे परम परम जोनी फिर फिर आया भुला जा सख संभुलाया हर जियो मिले तां गुरमुख बूझे चीन शब्द मनासी हे काम क्रोध भरे हमें अपराधी क्या मोह लै बोलै ना हम गुण न सेवा सादी काम क्रोध भरे हमें अपराधी क्या मोह लै बोलै ना हम गुण न सेवा सादी डुबदे पात्र मैं लहो तुम्हें आपे साच नाम अविनासी हे ना कोई करे न करना जोगा आपे करे करावे सो होएगा आपे बक्सल है सुख पाए सद ही नाम निवासी हे तन धरती सद बीज अपारा हर सच से तीवन जवा पारा सच धन जमया थोट न आवे अंतर नाम निवासी हर जियो अवगुणियारे नो गुण की जय आपे बक्सल है नाम दी जय गुरमुख हो सो पथ पाए कत नाम निवासी हे अंतर हार तन समझ न होई गुरमुख प्रसादी बूझै कोई गुरमुख हो सो तन पाए सद ही नाम निवासी अनल वाओ भ्रम भुलाई माया मोह सुध न काई मानंद किछु न सोजै गुरमुख नाम प्रगासी
मन मुख में माया सुते अपना कारण संभाले अंत बिगोते पर निंदा करे बचिंता जाले दुखे दुख निवासी हे आपे करता कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रुते मन निर्मल नामे नाम निवासी हे मारू महला ती जाए को से भी सदा थिर साचा दूजा लागा सब जग कचा गुरमति सदा सच सलाही सच ही सच पति जय है तेरे गुण बहते बहुते मैं एक न जाता आपे लाए लग लाए आपे लाए लाए जग जीवन दाता आपे बख्शे दे वड्याई गुरमते मन पी जय हे माया लहर सब निवारी है मन निर्मा हूं मैं मारी सजे गुण गावे रंग राता रसना राम रवि जय है मेरी मेरी कथविहानी मन मुख न बोझ फिर आणी जम काल घड़ी मोत निहाल अंद नार जाची जय हे अंतर लोभ करे नी बुझ सिर उपर जम काल न सोजय थै को माना सो गया अंत काल क्या की जय हे जो सच लागे तिन साची सोए दूजे लागे मन मकरोए दोहां सिरिया का खसम है आपे आपे गुण मैं पी जय है गुर कै शब्द सदा जन सो है नाम रसायण ए मन मोह है माया मोह मैल पतंग न लागे गुरमती हर नाम पी जय है सब नाम विच वरतै इक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई हो मैं मार सदा सुख पाया नाए सच्चे अमृत पी जय है केल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेव्या शब्द विचारा सबके छापे आ वर्तै गुरमुख मन तन पी जय है माया अगंजल है संसार है गुरमुख निवार है शब्द विचार है अंतर सांस अंतर सांस सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जय है इंद्र इंद्रासन बैठे जम का भव पावे जम न छोड़ा बहु कर्म को आवे सतगुर पेठे था मुक्त पाई हर हर रसना पी जय है मन मुख अंतर भगत न हो गुरमुख भगत सांत सुख हो पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पी जय हे ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी त्रै गुण बद्धक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता आनंद नाम रवि जय हे वेद पढ़े हर नाम न बूझे माया कारण पढ़ पढ़ लो जय अंतर मैला ज्ञानी अंधा क्यों कर दो तत्परी जय हे वेद बाद सब आंख बखाना है ना अंतर पीजा ना शब्द पिछाना है पुन पाप सब वेद रड़ाया गुरमुख अमृत पी जय हे आपे सचा एको सोई तस्में तू जाए वरना कोई नानक नाम रते मन सचा सचो सच रवि जय हे मारो महला तेजा सचै सचा तख्त रचाया निज कर वस्या तिथै मोह न माया सद ही सचा वास वस्या काट अंतर गुरमुख करनी सारी हे सच्चा सौदा सच वापारा ना तिथे भरम न दूजा पास पसारा सच धन खटिया कदे तोट न आवै बूझे को विचारी हे सच्चा लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड़ भागे सच्चा शब्द सदा गुण गावै सदर ते विचारी हे सचो सच सच सलाही एको वेखा दूजा नाही गुरमत उच ऊची पौड़ी ज्ञान रतन हो मैं मारी हे माया मोह सब जलाया सच मन वस्या जात तो पाया सच्चे की सब सच्ची करनी हो मैं तिखाने वारी हे माया मोह सब आपे की ना गुरमुख विरला के नहीं ची ना गुरमुख हो ऐसो सच कमावे सच्ची करनी सारी हे कार कमाए जो मेरे प्रभाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत साध ही अंतर शीतल हो मैं मारने वारी हे सच लगे तिन सब किश पावा सचा सबदे सच सुहावा ऐता साचे सिरदार साचे नदरी नदर सुवारी हे बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख सम बिन गुर दुख सुख जापै नाही माया मोह दुख भारी हे साचा सब जिना मन पाया पूर्व लिखिया तिनी कमाया सचो सेवा सच लियावै सच रते विचारी हे गुर की सेवा मीठी लागी अंदन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होवा गुर की सेव प्यारी हे से जन सुखिए सतगुर सचा लाए आपे भाणै आप मिलाए सतगुर राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी हे गुरमुख साचा सब पछाता ना तिस कुटाम ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सब ना जिया का आधारी हे हो मैं मेरा दूजा पाया किछ न चलै तुर खसम लिख पाया गुर साचे ते साच कमावै साचा दुख निवारी हे जा तुंदे सदा सुख पाए साचे सबदे साच कमाए अंदर साचा मंतन साचा तख्त परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मंतन रसना नाम सवारी हे मारू महला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब मैं वरतै एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप छाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय सिर से तंदा आपे लाए जिस पावै तो सापे मेले जिन गुरमुख को जाता है आवागौण है संसारा माया मोह
चिता बिकारा फिर साचा सलाही सदहे जन गुर का शब्द पिछाता है एक मूल लगे उन्हीं सुख पाया डाली लागे तिनी जन मंगवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोला है अमृत बाता है हम गुण नाही क्या बोला बोल तू सब ना देख तो लै तोल ज्यो पावे त्यो राख रहना गुरमुखे को जाता है जा तुद भाणा ता सची कारा लाए अवगुण छोड़ गुण माहे समाए गुणमय एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पिछाता है जय देखा ता एको सोई दूजी दुर्मत शब्द कोई एक समय प्रभ एक समाणा अपने रंग सदराता है काया कमल है कुमलाना मन मुख शब्द न बुझे याना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता है कोट कही के पाप निवारे सुधार जियो राख और तारे जो इच्छे सोई फल पाए हर ज्यो रंग में जी ठहराता है मन मुख ज्ञान कथे न होई फिर पर बैठ और न कोई गुरमुख ज्ञान सदा सला है जुग जुग एक को जाता है मान मुख कार करे शब्द सब दुख सवाए अंतर शब्द नाही क्यों दर जाए गुरमुख शब्द वसै मन साचा सद से वे सुखदाता है जय देखा तू सब निसाई पूरे गुर सब सो जी पाई नामो नाम ते आई सदा सद ए मन नामे राता है ना मेरा तप वित श्रीरा बिन नावे डू मुए बिन पीरा आवे जावे नाम नि बुझाई एक ना गुरमुख शब्द पिछाता है पूरे सतगुर बुझ बुझाई बिन नावे मुक्त किन न पाई नामे नाम मिले वड्याई सहज रह रंग राता है काया नगर टह टह टेरी बिन सदा चुके नी फेरी सच सलाहे सच समावे जिन गुरमुख को जाता है जिसनों नदर करे सो पाए साचा शब्द वसै मन आए नानक नाम रते निरंकारी दर सच साच पछाता है मारू सोले तीजा आपे करता जिस आपे करता सब जिस करना जी जन सब तेरी सरना आपे गुप्त वर्त है सब अंतर गुर कै सब पिछाता है हर के भक्त परे भंडारा आपे बक्से शब्द विचारा जो तो पावे सोई करसे सचे स्यो मन राता है आपे हीरा रतन मोलो आपे नदरी तोले तोलो जी जन सब सन तुम्हारी कर कृपा आप पिछाता है जिसनु नदर होवे तुर तेरी मरा न जमा चुका फेरी सचे गुण गावे दिन राती जुग जुग एक हो जाता है माया मोह सब जग तो पाया ब्रह्मा विष्णु देव सबाया जो तुत पाने से नाम लागे ज्ञान मति पिछाता है पाप उनवर्त संसारा हर सो सब दुख है पारा गुरमुख होवे सो सुख पाए जिन गुरमुख नाम पिछाता है कीर्तन कोई मिटन हारा गुर कै शब्दे मुख द्वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पिछाता है माया मोह हर स्यो चेतन लागे दूजे पाए खणा दुखिया गए मन परम भुले पिगधारी अंतकाल पछताता है हर कह पाने हर गुण गाए सब किल विकाटे दुख सपाए हर निर्मल निर्मल है बाणी हर से ती मन राता है जिसनु नंद करे सो गुण नित पाए हो मैं मेरा ठाकर हाय गुण अवगुण का एको दाता गुरमुख विरली जाता है मेरा प्रभ्यत मेरा प्रभ निर्मला ते पार आया पे मेले गुर शब्द विचार आया पे बक्से सच राय मन तन सच राता है मन तन मैल आवे ज्योते पारा गुरमुख बुझे कर विचारा हो मैं मार सदा मन निर्मल रसन सेव सुख दाता है गड़काया अंदर बहु हट बजारा तिस विच नाम आया त पारा गुर कै शब्द दरास गुर कै शब्द सदा दर सो है हो मैं मार पछाता है हम रतन मोल कम पारा कीमत कमन करे बेचारा गुर कै शब्द तोल तो लाए अंतर शब्द पिछाता है सिमर शास्त्र बहुत विसारा माया मोह पसरिया पा सारा मूर्ख पढ़ा शब्द न बूझे गुरमुख विरला जाता है आपे करता करे कराए सची बाणी सच रड़ाए नानक नाम मिले वड्याई जुग जुग एको जाता है मारू महला तीजा सो सच सेव्यो सिरजनारा सबते दुख निवारण हारा गम गोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम अथाहे आपे सच्चा सच वरताए एक जन सच है आपे लाए सचो सेव सेव सच कुमावे नामे सच समाहे तुर भगता मिलया मिलाए सची भक्ति आपे लाए साची बाणी सदा गुण गावे सिन मैं कलाहा है गुरमुख वंज कराए परे आप शाणा एक सुबिन को और न जाने सच्चा साव सच्चे बनजारे पूंजी नाम विसाए आपे साजे सिष्ट उपाए विरले को गुर शब्द बुझाए सदगुर से वसे जन साचे काटे जम के फा काटे जम का फाहा है
ਅੰਨਾ ਕਰੇ ਸਵਾਰੇ ਸਾਚੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੂਜੇ ਜਿੰਤ ਪਾਜੇ ਮਨ ਮੁਖ ਫਿਰੇ ਸਦਾ ਅੰਦ ਕਮਾਵੇ ਜਮ ਕਾਜੇ ਵੜਾ ਕਰ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਲਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਅੰਡ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੱਚਾ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾਏ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਨਾਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਵੈ ਮਨ ਵਸਾਏ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹੈ ਤਿਨ ਸਿਰ ਝੂਕਾ ਕਹਾਏ ਅਗਾਮੈ ਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਗਾਮੈ ਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸਦਾ ਸਭ ਸਲਾਹੀ ਗੁਣਦਾਤਾ ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨਾ ਮੰਗੈ ਤਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਰੁਦਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਲੱਖ ਅਭੇਵਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਖ ਲਖਾਹਾਏ ਪੂਰੇ ਸਗ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈ ਨਾਮ ਜਪੀ ਤੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਗੁਣ ਗਾਹਾਏ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਣੈ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੇ ਬੇਪਰਵਾਹਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣੈ ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮੰਤਾ ਹੇ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਇਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸਭ ਸਲਾਹ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਤਾਹੇ ਸਦਾ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਾ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ ਸੱਚ ਦੇਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਹਾਏ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ ਆਂਦਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰਵ ਰਵਿਆ ਘਟਯੰਤਰ ਸਭ ਸਚਇਓ ਮਹਾਹੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਭ ਦੇ ਮਾਨਿਓ ਮਹਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਹੁਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਰਹੇ ਕਰੰਗੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਨਾਲ ਕਹਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ਬਿਨ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਰਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤੇ ਮਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋ ਸੱਚ ਸਬਦੇ ਲਾਹਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰਤਾ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਸਾਹੇ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਭੈ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਉ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਜਮ ਕਾਢ ਲਏਗਾ ਸਾਹੇ ਅਫਰਿਓ ਜਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਆਈ ਸਭ ਸੁਣੈ ਤਾਂ ਦੂਰੋ ਭਾਗੈ ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਵੇ ਪਰਵਾਹਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਹਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਸਰਿਆ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਬੋਝੈ ਸਭ ਸੱਚੈ ਸੁਖਤਾ ਹਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਭ ਸਲਾਹੇ ਗਾ ਮੈਂ ਗੋਚਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹੇ ਏਕ ਨਾਮ

Ar Dios se veo agame para te santa na paye paye para vara gur prasad rya katran tartet katran mate agaha he samay vartay ko soi gur prasadi pragat hoi sabna pratpal kare jag jeevan denda rich sambhaha he pura satgur bujh bujhaya hukme hi sab jag to paya hukum manne soi sukh paye hukum sir saha pat sahaye sacha satgur sabde para tis da sabd nistara sansara ape katta kar kar vekhe denda sas giraha he kod madde kise bujhaye gur kai sadr te rang laaye har salahe sada sukh data har bakse pag salahe satgur sevai ji se jan sache jo mar jamme ka chin ka che agame go chirve parwah bhagat vachalya tha he satgur pura saaj ladaye sache sab sada gun gaaye gun data varte sab antar sir sir likhda saha he सदा हदूर गुरमुख जापै सबदे सेवै सोजन त्रापै अंडन सेवै सच्ची वाणी सब सचयो महा हे अज्ञानी अंधाभो कर्म दृढ़ाए मन हट कर्म फिर जो नी पाए भिख्या कारण लोभ लाभ लोभ कमावै दुर्मत का दूरा है पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए गुर कै सबधर नाम चित लाए मन तन रव रया घट अंतर मन पीने जगत सलाहा हे मेरा प्रभु साचा असर संघारण गुर कै शब्द भगत निस्तारण मेरा प्रभु साचा सुर सिंगारण गुर कै शब्द भक्त निस्तारण मेरा प्रभु साचा सदहि साचा सिर साहा पात साहा हे से भगत सचे तेरा मन पाए दार कीर्तन करह गुर शब्द सुहाए साची बाणी अंगन गावे निर्धन का नाम विसाहा हे जिन आपे मिले विछोड़े नाही जिने आपे मेल विछोड़े नाही गुर कै शब्द सदा सलाही सबना सिर तू एको साहेब सबदे नाम सलाहा हे बिन शब्द सुधनो कोई न जानी तुद आपे कथी अकथ कहानी आपे सब सदा गुरदाता हर नाम जप संभाहे तू आपे करता सिरजनहारा तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा गुरमुख नाम देवा तू आपे सहसा गणतनता हे भक्त सचे तेरा दरबारे सबदे सेवन पाए प्यारे नानक नाम रते बैरा की नामे कारज सुहाए मारू महला तीजा मेरा प्रभु साचे खेड़ रचाया कोई न किसी जिहा उपाया आपे पर करे करे वेख विख सह सब रस दे ही महा हे वाजे पौन तया वजाए शिव शक्ति दे ही मैं पाए गुर प्रसादी उल्टी होवे ज्ञान रतन सबता है अंधेर चानन आपे किया एको वरतय वर्ण बिया गुर प्रसादी आप पछाणे कमल बिकसै बता है अपनी गणत अपनी गहन गति आपे जाना है होर लोग सुन सुने आग बखाना है ज्ञानी होवे सुगुरमुख बूझै साची सिर सलाह है देही अंदर वसता पारा आपे कपट खुलावन हारा गुरमत सहजे अमृत पीवै त्रिसनागन बुझा है सब रस देही अंदर पाए विरले को गुरसब बुझाए अंदर खोजे सब सलाहे बाहर काहे जाहा है विण चाख साध किसे नाया गुर कै शब्द अमृत पी आया अमृत ही अमरा पद होए गुर कै शब्द रसा है आप शाण सो सब सो साव गुण जान है गुर कै शब्द हर नाम खाण आंदे नाम रता दिन राती माया मोह चुका है गुर सेवा ते सब किछ पाए हूं मैं मेरा याव गुआए आपे कृपा करे सुखदाता गुर कै शब्द सोहा है गुर का सब अमृत है बाणी अंदर हर का नाम वखाणी हर हर सच्चा वसै घट अंतर सो घट निर्मलता है सेवक सेवा सब सलाह है सदा रंग राते हर गुण गावे आपे बक्से सब मिलाए परमल वास मनता है शब्द एकात कथे सलाहे मेरे प्रभ साचे वे परवाहे आपे गुणदाता शब्द मिलाए शब्द का रास्ता है मन मुख भूला टोर न पाए जो तुर लिखिया सुकर्म कमाए बिख्या राते बिख्या को जय मर जन मैं दुखता है आपे आप सलाहे तेरे गुण प्रभु जी माहे तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची आपे लख था है बिन गुरदाते कोई न पाए लख कोटी जे कर्म कमाए गुर कृपा ते घट अंतर वस्या शब्द सच सलाहाए से जन मिले तुरया मिलाए साची बाणी शब्द सुहाए नानक जन गुण गावे नित साचे गुण गावै गुणी समाहाए मारू महला तीजा निचल एक सदा सोई पूरे गुर ते सोजी होई हर रस पीने सदा ध्यान गुरमत सीर सन्नाहाए अंदर रंग सदा सचियारा गुर कै सदर नाम प्यारा नौ निज नाम वस्या काट अंतर छोड़िया माया काला हे रयत राजे दुर्मन दोई बिन सतगुर से भी एक न होई एक ध्यान सदा सुख पायन निचल राज

0: किसा शरीक नाहिर कोई किसी उतै जवाब न होई नानका प्रभ अपे अपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मधुसूदन दामोदर स्वामी रिखी केश गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जीओ असुर सुंगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा तरणी धारी नरसंग नारायण दाड़ा अग्रे प्रथम तारायण बामन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चांद जस रूप नरेख्या बनवाली शकर पान दर्शन उपया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल नाथ नाथ गोपीनाथ सगला है साथे गोपीनाथ सगला है साथे वासुदेव निरंजन दाते बरन नसा को गुणेंगा मुकांद मनोहर लक्ष्मी नारायण
1: द्रौपदी लजा निवार उदाहरण कमला कांत करे कंतवाल अनंत विभूति मह संगा अमोघ दर्शन अजूनी संभव अकार मूर्त जस कदे नाही खाओ अविनाशी अविगत अविनाशी अविगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बेकुंठ के वासी मच्छ कछ कूरम आ गया औतरासी केसव चलत कहे निराले कीता लोढ़े सो होएगा निराहारी नर वैर समाया तार खेल चतर पज कहाया सावल सुंदर रूप बना है बैन सुनत सब मुहेगा बनमाला विपुखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत संगा पीत पतंबर त्रिपवन तनी जगन नाथ गोपाल मुखी मुखपणी सारंग तार भगवान बिठुला मैं गणत न आवे सरबंगा नह कंटक नह केवल कहिया तंजय जल थल है महिया मेरत लोक पै आल समीपत अस्थर थान जिस है अपगा पतित पावन दुख तय पंजन अहंकार निवारण है पव खंडन भगती दुखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिका निरंकार अचल अडोले ज्योत स्वरूपी सब जग मूलो सो मिले जिस आप मिलाए आप हो कोए नन पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपाव है आप खपाव है तुद लेप नहीं एक तिल रंगा एक जीह गुण कवन खवा बखान सहस फनी सेख अंत ना जाने नतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा उठ गही जगत पित सरणाया पै पियानक जम दूत दुत्तर है माया हो कृपाल इच्छा कर राखो साध संतन कै संग संगा दृष्ट मान है सगल मथेना इको मागो दान गोविद संतरेना मस्तक लाए परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाते तिन साधु चरण लै हृदय प्राते सगल नाम निदान तन पाया अनहद सबद मन वाजंगा कीर्तम नाम कथै तेरे जेहबा सत नाम तेरा परा पुरबला कह नानक भगत पै शरणाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथे ता आप वखाण है। नानक दास दासन को करियो, हर पावे दासा राख संगा। मारू महला पांजमा अल्है अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। होए पै खाक फकीर मुसाफर, इहो दरवेश कबूल दरा। सच निवाज जकीन मुसला, मनसा मार निवारो आसा। देह मसीद मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा। सरा सरियत लै कमाव हो, त्रिकत तर्क खोज टुलाव हो। मारफत मन मार हो अब्दाला, मिलो हकीकत जत फिर ना मरा। कुरान कतेव दल माहे कमाही, दस औगत रखो बदराही। पंच मरद सिदक ले बाधो, खैर सबूरी कबूल परा। मक्का मिहर रोजा पै खाका, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा। हूर नूर मस्क खुदाया, बंदगी अल्हा अला आला हजूरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। सो मुला मल औन निवारा, सो दरवेश जिस सिफत तरा। सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिलै मह मौला। तस्बी याद कर हो दस मर्दन, सुन्नत सील बंदान बरा। दिल मह जानो सब फिलहाला, खिलखाना ब्रादर हमू जंजाला। मीर मलक उमरे फानाया, एक मुकाम खुदाए दरा। अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथै खैरी। पंजमे पंजे एकत मुकाम है, एह पंच वखत तेरे अपरपरा। सगली जान करो मौदीवा, बद अमल छोड़ करो हथ पूजा। खुदाए एक बुझ देवो बांगा, बुरगु बरखदार खरा। हक हलाल बखोर खाना, दिल दरियाओ तो हो मैलाना। पीर पछाणे पिस्ती सोई, अजराइल न दोज ठरा। काया किरदार औरत यकीना, रंग तमासे मान हकीना। ना पाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सुरत दस्तार सिरा।

निवारे जप हर हर पौ नहीं काल का। समर्थ अकथ अगोचर देवा जी जंत सबता की सेवा। अंडज जेरज सेतज उत्पज बहु प्रकारी पालिका। तिसे प्राप्त हुए निधाना राम नाम रस अंतर माना। कर गहलीने अंध कूपते बिरले के साल का। आद अंत मद प्रभु सोई आपे करता करे सो होई। प्रम पौ मिटिया साध संगते

जागै अनद बिनोद करे हर सिमरन तिस माया संग न तालका रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाही अपना नाम दे प्रभ प्रीतम सुन बिनंती खालिका नाम रतन तेरा है प्यारे रंग रते तेरा दास अपार।

कमल हृदय नत तारी गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी तन मन अर्प तरी सब आ गए जग मह नाम सुहावना सोठा कर क्यों मनो विसारे जियो पेंड दे साज सवारे सास ग्रास संभाले करता कीता अपना पावना जाते बिरथा को नाही आठ पहर हर रख मन माही साध संग भज अचत स्वामी दीर्घय सोभा पावना चार पदार्थ अष्ट दशा सद नाम निदान सहज सुख नौ निद सर्व कल्याण जे मन मह चाहे मिल साधु स्वामी रावणा सास सिमरत वेद बखानी जन्म पदार्थ जीत प्राणी काम क्रोध निंदा पर हरिया हर रसना नानक गावना जस रूप न रेख्या कुल नहीं जाती पूरन पूर रिहा दिन राती जो जो जपै सोई वड़ पागी बहुड़ न जोनी पावना जसनु बिसर पुरख विधाता जलता फिर रहे नित पकाता अकिर्त कने को रखे ना कोई नरक कोर मह पावना जियो प्राण तन तन तन जिन साजिया मात गर्भ मह राख निवाजिया तिस स्यो प्रीत छाड़ अनराता काहू सरे न लावना तार अनुग्रह स्वामी मेरे कट कट वसै सबन कै

हाथ हमारे कछु नाही। जिस जनाहे तिसे जनावना, जाके मस्तक तर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापे माया। नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना, आज्ञा दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने। ताकी कीमत कहन न जाई, जत कत उही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूरन पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मेरत दुख सुख लिख पाए, तल नहीं बधे कटहे ना कटाए, सोई हुए जे करते पावे,

सत संगत स्यो मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार विच हो मल कटे अपनी कुला का करे उधार गुणा की रास संग्रह अवगण

दूजे ना तरे प्यार महला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरा डर ना है गुर कै शब्द संतोखिया नानक बिगसा नाए महला चौथा चढ़ भौथ चाल सौ सागर लहरी दे ठाक न सच्चे बूहे थे जे गुर तीरक दे तत दर जाए उतारिया गुरदसै सावधान नानक नदरी पाई है दीर्घ चले मान पौड़ी नह कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मिलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बन आई ऐठै सुख दाता मन वसै अंत हुए सखाई हर स्यो प्रीत उपजी गुर सोजी पाई श्लोक महला पहला पुली पुली मैं फिरी पद्र

कमाए, नानक चानण गुर मिले। दुख बिख जाली नाए पौड़ी, माया वेख ना भुल तू। मनमुख मूर्खा चल दिया नान नाल न चलई, सब झूठ दर्ब लखा, अज्ञानी अंध न बुझई। सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे, जिन हर रस चखा, आपक

मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे श्लोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगह सच कबूल साहेब लेखा मंग सी दुनिया देख न पूल दल दरवानी जो करे दरवेसी दल रास इस मोहब्बत नान

हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला। पोतन पै मन वसै हे कह पादर हीड अत डापन दुख कर।

पौड़ी। हर नाम बिना जगत है, निर्दन बिन नावे तृप्त नाही। दूजे परम पुलाया हमें दुख पाही। बिन कर्मा किछ न पाइये जे बहुत लुचाही। आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही। आप करे जिस आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया, इस तन की कीमत कही न जाए। इत तन पाइए भुख लथी, सुख बसिया मन आए। जिन्ना को तुर लिखिया तिनी पाया आए। मनमुख जगत निर्दन है, माया नो बिल लाए। अंधन फिरदा सदा रहे, भुख न कदे जाए। शांत न कदे आवई, न सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदार है, सहसा कदे न जाए। नानक बिन सतगुर मत पवई, सतगुर नो मिलेता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में

पर है। जित सदा सदा सुख हुए, नानक गुरमुख बूझिए, जसनो आप बिखाले सोए। पौड़ी अंतर जप अंतर जाप तप सजमो, गुर सबदी जापे, हर हर नाम त्याई है, होमे अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है, चाख्या साध जापे, जिन चाख्या से निरपौ पहे, से हर रस त्रापे। हर कृपा तार पियाया, फिर काल न व्यापे। श्लोक महला तीजा, लोभ लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण न

बिन गुर तत् न पाइय अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया ब्रह्म पो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाइय उत्तम मत तराहे नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिपवन से समाहे महला तीजा।

आपेनु आप मिल रहिया हमे दुविधा मार। नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल बिखम संसार पौड़ी। मन मुख अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा पव थके अंदर तक तते। सिमरत सास ना सोदनी मन मुख वगुते बिन गुर किसे न पायो हर नाम हर सत्ते। तत ज्ञान विचारिया

राम महल्ला पांचवा माया साथ न चलई क्या लपटा है अंध गुर के चरण ते आए तू तुट है माया बांध पौड़ी पाणे हुकम मनायोन पाणे सुख पाया पाणे सतगुर मेलियोन पाणे सच त्याया पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक तिस शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जी आप मारे गोविंद मन की पत्री वाचनी सुखी हो सुख सार जो ब्राह्मण पला आखी है जे बुझे ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पड़े गुर कै शब्द विचार आया ओहो।

पात साहो जिस मिल की जय भोग पौड़ी तू अगम दयाल ब्यंत तेरी कीमत कहे कौन तुद सिरजा सब संसार तू ना।

अबनासी जग उदरण तुद थापे चारे जग तू करता सगल तारण तुद आवन जाना किया तुद लेप न लगे त्रिण जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सतगुर चरण तू होरत उपाय न लभही अबनासी सृष्ट करण दखणे महला पांचमा जे तू वत है अंगणे हब तरत सुहावी होए हिक्स कंते बाहरी मैडी वात न पुछे कोए महला तीजा हब्बे टोल सुहावणे सो बैठा अंगण मल पही न वंजे बिरथड़ा जो कर आवे चल महला पांचमा सेज विचाई कंत तू किया हब सिगार एती मंज न समावई।

सृष्टि साज समावही तेरा रूप न जाई लख्या क्यों तुझे त्यावही तू सब में वर्त है आप कुदरत देखावही तेरी भगत परे पंडार तोट न आवही एह रतन जब हर लाल कीम न पावही जिस हो है आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे न आवे तोट जो हर गुण गावही दखने महला पांजमा जाम पसी हाथ में प्रीम है जय नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पांजमा नान

पांजमा बेखण कू मस्तक मुख जेहे जेहा तो तणी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्राप्या महला पांजमा दुखिया दर्द कहे वेदन जाने तू तणी जाना लख पवे फिरी टखंदो ता जीव सा महला पांजमा दहदी जाए करार वहन वहिंदे मैं डिठिया से रहे अमान जिना सतगुर पेटिया कौड़ी जिन जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापे जिन जन गुरमुख बूजिया सोचो कुंडी जापे जो नर उसकी सरणी परे तिस कंभे पापे जन्म जन्म की माल उतरे गुर तूड़ी नापे जिन हर पाणा मनिया तिस सोग ना संतापे हर जियो तू सबना का मित्र है सब जान है आपे ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापे सब अंतर जन वरताया हर जानते जापे दखने महला पांजमा जिना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास जिना की मैं आसड़ी तिना महजी आस महला पांजमा गिली गिली रोडड़ी पौधी पव पव आए जो बैठे से फाथिया उबरे पाग मथाए महला पांजमा डिठा हब मजाहे खाली कोई ना जानिए तै सखी पाग मथाहे जिनी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हो ढाडी दर

मित्र है, ताक्या मैं काड़ा जिनी ठगी जग ठगया, से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंगाया, जित्ता पावाड़ा गुरमति सब रस पूगदा, वड्डा अखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दित्यो सतवंता साड़ा। जित लायन तुत्ते लग दिया नह खिंजो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाया पायदा गुर अंदर वाड़ा, गुर नानक तुठा पाहिरो हर वसदा नेड़ा, दखने महला पांजमा जामू आवे चित तू।

सग अह कर करे सो अह कर पाए, एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सो दिया, बिन संगत अहंकार न पगे हमें मूल न छुट्टई, बिन साधु सतसंगे टिचर था न पावे जिचर साहेब स्यो मन पंगे, जिन जन गुरमुख सेविया तिस कर दीवान अपगे, हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे। दखनी महला पांजमा लोड़ी दे हब जाए सो मीरा मरन सिर, हाथ मंजो सो तनी चौदो मुख अलाए। महला पांजमा माणक मुहे मा

छावना जे देखे है कवार ता सुख की माहू बाहरे पौड़ी मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाया मैं चार कुंडा पा लिया तुद जे वड़ ना साया मैं दसे मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाया मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाया नित सेव है सेव अपना सत संग मिलाया सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाया तुद जीवड होर न सुजई मेरे मित्र गुसाया डखने महला पांजमा मूथी आओ तख्त तिरी मैंजे पातशाह पाव मिलावे कोल कवल जिवे बिकसाव दो महला पांजमा पिरिया संदड़ी पुख मुँह लावण थी विथरा जानू मिठाई इख बेई पीड़े ना हुते महला पांजमा ठगा नी हो मतोरड़ जान गंदरबा नगरी सुख कटाओ डोए इस पंदाणु कर कहने पौड़ी अकल कला न पाईए प्रभ अलख अलखंग खट दर्शन परमते फिरे ना मिलिए पिंखंग वर्त करे चंद्रायणा से किते ना लेखंग वेद पढ़े संपूर्णा तत् सार ना पेखंग तिलक कढ़े स्नान कर अंतर का लेखंग पेखी प्रभु न लब्बई विण सच्ची सिखंग उला मार्ग सो पवे जिस तुर मस्तक लेखंग तन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखंग दखने महला पांजमा सो निवाहो गड जो चालाओ ना थीए कार कुड़ावी छड सम्मल सच तनी महला पांजमा हब समाणी जोत जो जल कटाओ चंद्रमा प्रगट थिया आप नानक मस्तक लिखिया महला पांजमा मुख सुहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगह मन्नी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर पेख न पाईए प्रभ अंतर जामी एक सहर जियो बाहरी सब फिरे निकामी मन रत्ता कुटंब स्योनत गर्भ फिरामी फिर है गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल दया नाल न चलई खिन जाए बिलामी बिचर दे फिर है संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुरु पाया हर मिलिया स्वामी जो तन हर का सेव को हर तिस की कामी दखने महला पांजमा मुखो अलाए हब मरण पिछाण दो कोए नानक तिना खाक जिना जकीना हैक सेओ महला पांजमा जान बसोंदो मंज पिछाणो को हेकड़ो तै तन पड़दा नाहे नानक जय गुर पेटियो महला पांजमा मतड़ी कांडक आह पाप तुम दो पीवसा मुँह तन प्रेम अथा पसन कु सच्चा तनी पौड़ी निरपो नाम विसारिया नाल माया रचा आवे जाए पवाईए बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंधरो थोथा कुड़ियार कुड़ी सब खच्चा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशा वेख तुर कर्मचा जमदुती है हेरिया दुखी मह पच्चा होया तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखने महला पांजमा पर पाते प्रभ नाम जप गुर के चरण त्याए जन्म मरण मल उत्तर सच्चे के गुण गाए महला पांजमा देह अंधारी अंध सुनी नाम बिहूनिया
ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟ ਬੁੱਠਾ ਸੱਚ ਤਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿੱਠ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਮੂੰਹ ਕਣੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆ ਵਿਆਹ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਈ ਓਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਸਭ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝਾਈ ਓਨ ਛੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲਿਵਲਾਈ ਉਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹਰ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਓਨ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਕੀਤਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਭਾਈ ਹੋਆ ਉਹੀ ਅਲ ਜਗ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਪਾਈ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਓ ਬਣ ਆਈ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਢੀਐ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਿਹਾਲਸਾ ਸੁਤੜੀ ਸੋ ਸੋ ਡਿੱਠ ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਖਨੀਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਪਰਖ ਮੁਖ ਅਲਾਵਣ ਥੋਥਰਾ ਮਨ ਮਜਾਹੂ ਲੱਖ ਤੁਧੈ ਦੂਰ ਨਾ ਸੋ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲ ਹੈ ਚੰਦ ਸੁਰ ਬਿਨਾਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਢਾਹੇ ਡੇਰੇ ਜਾਸੀ ਰੰਗ ਤੁੰਗ ਗਰੀਬ ਮਸਤ ਸਭ ਲੋਕ ਸਦਾਸੀ ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਮਸਾਏ ਕਾ ਸਭੇ ਉੱਠ ਜਾਸੀ ਪੀਰ ਪਕਾਬਰ ਔਲੀਏ ਕੋਥਿਰ ਨਾ ਰਹਸੀ ਰੋਜਾ ਬਾਗ ਨਿਵਾਜ ਕਤੇਬ ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਚਹਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਆਵੇ ਜਾਸੀ ਨਿਹਚਲ ਸੱਚ ਖਦਾ

0: मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए। महला पांचवा आसक आसा बाहरा मन वड्डी आस आस निराशा आस निराशा हिक तू हो बल बल बल गई आस। महला पांचवा बिछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोद बाज ते तिस देवते सन इंद्रे जासी। सिमरती शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी। जती सती सन्यासिया सब काले वासी मन जोगी दिगंबरा जमे सन जासी। जो दिसे सो विंसना सब विंस विनासी।
1: पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थेरो सी श्लोक दखने महला पंजमा से नंगे न नुख भुखे न भुखिया भुखे कूड़ न दुख नानक पी पिखन दो सब दुष्ट सब देश। महला पंजमा सुख समूहा भोग तुम सवाई कोतनी नानक हबो रोग मृतक नाम बिहूणिया। महला पंजमा एकस की तू आह पछाणू भी हेक कर नानक आसड़ी।

तिनकी गणत न करिए को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लिया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर, जिन गुर का भाणा मन्या पला। तू अंतर जामी हर प्राप, तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। तो खारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रेष्ठ नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम, जिनके गुरत लेख माथ। जिनको तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम अरादया। तिनके पाप इख निमिख सब लाथे, जिन गुरु बचनी हर जापया। धन धन ते जन, जिन हर नाम जपया, तिन देखे हो पिया सनाथ। तू जग जीवन दगजी सब करता श्रेष्ठ नाथ। तू जल थल मई अल भरपूर सब ऊपर साच तणी। जिन जपया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी, तिनके उजल मुखर द्वार। ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिए राखनहार। हर संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल थल मई अल भरपूर सब ऊपर साच तणी। तू थन थन अंतर हर एक, हर एको एक रव्या। बण त्रिण त्रिपवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चव्या। सब चवे हर हर नाम करते, संख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते पावे। सो सफल दर्शन देह करते, जिस हृदय जिस हर हृदय नाम सद चव्या। तू थन थन अंतर हर एको एक रव्या। तेरे भगत भंडार असंख, जिस तू देवे मेरे स्वामी। तिस मिले जिसके मास्तक गुर हाथ, जिस हृदय हर गुण टिकै। हर गुण हृदय टिकै तिसके, जिस अंतर पौ भावनी होई। बिन पै किने न प्रेम पाया, बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीतम नानक, तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरे भगत भंडार असंख, जिस तू देवे मेरे स्वामी। तिस मिले तो खारी महला चौथा। नावण पुरब अपीच, गुर सरत दर्स पिया। दुरमत मैल हरि अज्ञान अंधेरा गया। गुर दर्स पाया अज्ञान गवाया, अंतर ज्योत प्रगासी। जन्म मरण दुखिन मैं बिनसे, हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पुरब किया, सतगुरु कुल खेत नावण गया। नावण पुरब अपीच, गुर सतगुर दर्स पिया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर सिख सिखा। अंदिन भगत बनी खिन खिन मिख बिखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी, सब लोक वेखण आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया, तिन आप हर मेलाया। तीर्थ उदम सतगुरु किया, सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग

पात चढ़िया निर्मूला, छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाओ तो सच लागे, साचे के बिहारी, साची बस के पार चलाए, पहुंचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर माणक, आपे है पासारी, आपे दैद से आप चलावे, नीचर है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर बैडा, ज्ञान गुण सर डारी। कहत के बीत सनोरे, संते निधि खेप हमारी। रीकल वार गवार, मूड तुल टो पवन फराबो। मन वितवार मेर सर पाठी, अमृत धार चुआवो। बोलो भैया राम की दोहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहो। पै विच पाओ पाए को बूजे, हर रस पाव पाई। जीते कट अमृत सभी में पावे, तिसे प्याई। नगरी एक नौ दरवाजे, तावत बरज रहाई। त्रिकुटी छुटे दसवा दर खुले, ता मन खीवा पाई। अपह पद पूर ताप तहना से, कह कबीर विचारी। उपट चलंते ओह मदमाया, जैसी गोंद खुमारी। काम क्रोध तृष्णा के रीने, गत नहीं एक जानी। फूटी आखे कुछ न सूझे, बुढ़ मुए बिन पानी। चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टाके मुंह दे, दुर्गंध ही के बेडे रहो। राम न जपो केवन भ्रम तुम ते लाल न दूरे, राम न जपो कवन भ्रम पूले, तुम ते काल न दूरे। अनक यतन कर एह तन राखो, रहे वस्ता पूरे। आपन किया कछ न होवे, क्या को करे प्राणी। जात इस भावे सतगुर भेटे, एको नाम बखानी। बदुआ के करुआ में बसे, फुलत दे ए आने। कहो कबीर जय राम न चेत्यो, बूढ़े बहुत सियाने। टेढ़ी पाग टेढ़ी चले, लागे बीरे खान। भौ भगत स्यो काज न कछुए, मेरे काम दीवान। राम बसार्यो है अभिमान, कनक कामनी महासुंदरी। पेख पेख सच मान रहो। झूठ लालच झूठ विकार, महामद एबिद औद विहान। कहो कबीर अंत की वेर, आए लागो कानन दान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मठिया, संग न कछु ले जाए रहो। देहरी बैठी मेहरी, रोवे द्वारे लो सग बाए। मरगट लग सब लोक, कटुम मिल हंस अकेला जाए। वह सुत बह वित बह पुर पाटन, बोहर न देखे आए। कह कबीर राम की ना सिमरो, जन्म अकारथ जाए। राग के दारा बाणी रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संयंगत है, भक्त हृदय नाहे। चरनार बिंद न कथा पावे, सुपच तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत, काहे न बाल्मीकि देख। किस जात ते कह पदे अमरियो, राम भगत वसेख राओ। स्वान शस्त्र अजात सब ते, कृष्ण लावे हेत। लोग बपरा क्या सराहे, तीन लोक परवेश। अजामल पिंगला लुपत, कुम कर गए हर के पास। ऐसे दुर्मत निस्तरे, तू क्यों न तरह रविदास। राग पैरों महल।

ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का कर्म न कर मूर्ख का वारा, इस गर्भ ते चले बहुत बिकारा, रहो चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, बाटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे कड़े कुमारा, पंच तत्मिर देही का आकारा, कटबिद को करे विचारा, कहत नानक के जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई, पैरों महला तीजा, जोगी गृह पंडित पेख तारी, ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहा सोए, जागत रहे न मूसा कोई राओ, सो जागे जिस जस गुरु सतगुरु मिले, पंच दूत ओह बसकत करे, सो जागे सो तत् बेचारे, आ मरे अवरा न हमारे, सो जागे सो एको जाने, प्रकृत छोड़े तत् पछाने, चौवरना बिच जागे कोए, जम काले ते झूठे सोए, कहत नानक जन जागे सोए, ज्ञान अंजनता की नेत्री होए, पैरों महला तीजा, जाको राखे अपनी सरनाई, सच

फल पाई रेजन के सौकुर उपकारा हुक्मे हुआ हुक्मे बरतारा राओ एह कार तेरा है तारा खिन में विनसे करतन लागे बारा कर प्रसाद खेल दिखाया गुर कृपा ते परमपद पाया कहत नानक मार जी वाले सोई ऐसा बूझे भरम न भूले कोई।

ना जीपे मन मुख गवारा, बिना में कैसे पारा पावे पारा, आपे दात करे दैतार, देवन हारे को जयकार। नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हृदय नाम बसाए, पैरो महला तीजा, नामे उदरे सब जितने लोहे, गुरमुख जिना परापत होए, हर जीव अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम बढ़ाई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, नानक नाम परापत हो, बिना में मन मुख जम पर जाहे, औखे बहे चोटा खाहे, आपे करता है आपे सोए, नानक नाम परापत होए। पैरो महला तीजा, गोविंद प्रीक सन कादक उधारे, राम नाम शब्द विचारे, हर जियो अपनी कृपा तार, गुरमुख नामे लगे प्यार रहो। अंतर प्रीत भगत सच होई, पूरे गुरमे लावा होई, निज कर बसे सैठ सुभाए, गुरमुख नाम बसे मन आए। आपे वेखे वेखन हार, नानक नाम रखो उर तार, पैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उर तार, बिना में माथे पावे छार, राम नाम दुर्लभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहो। राम नाम जन पाले सोए, गुर

कलयुग में भव कर्म कमावे ना रुत न कर्म थाए पावे। कलयुग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगा प्यार राव। तन मैं खोज करे मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रब रेहा तै लोए। कलयुग में हर जियो एक, हो रुत न काई। नानक गुरमुख हिरदे राम नाम लिहो जमाई। पैरों महला तीजा कर दूजा, इको अहंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मनमुख रोग ब्यापे, तृष्णा जले अधखाई। मर मर जमे ठौर न पावे, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बजाई, हमें रोग जगत उपाया। बिन शब्दे रोग न जाई राव, सिमर सातर पड़े मन के ते। बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रैगुण सभ्य रोग ब्यापे। ममता सुरत गवाई, इक आपे काढ लाए। प्रभे आपे गुरसेवा प्रभ लाए, हर कर नाम नदानो पाया। सुख वसिया मन आए, चौथे पदवी गुरमुख। चौथे पदवी गुरमुख वरते, तिंद जगत वासा पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी, विचों आप गवाया। एक सकी सरकार एक जन, ब्रह्म विष्णु रुद्र अपाया। नानक ने चल साचा, एको ना ओ मरे न जाया। पैरों महला तीजा, मनमुख दुबदा सदा है रोगी। रोगी सगल संसारा, गुरमुख बूझे रोग गवावे।

हर आप निरंजन रंकार निरहारी हर जस तू मेले सो तुझ मिलसी जान नानक क्या यह जंत विचारी।

निरंकर लै हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। कहो कबीर हो किया बखाना, गुरपीर मिल खुद खसम पछाना। भैरो महला पंजमा, दास मिर्गी सहजे बंद आनी। पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी, संत संग लै चढ़ियो शिकार। मृग पकरे बिन घूर हथियार राव, अखेर बिरत बार आयो ताय अहेरा पायो। कर कै गाय

अचर तेरी कुदरत तेरे कदम सलाग नीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह निधरिया तर पन है खुदा गरीब नवाज दिन रहन त्याए नानको खुद कसम मेहरबान अलो ना विसरे दिल जी अपनान भैरो महला पंजवा साच पदार्थ गुरमत लहो प्रभ का भाणा सत्कार सहो जीवत जीवत जीव

चरण प्रभ सेवा धूर बाचे सब सुर नर देवा नानक पाया नाम निधान हर जप जप उधरिया सगल जहान भैरो महला पंजवा अपने दास को कंट लगावे निंद को अगन मह पावे पापी दे राके नारायण पापी की गत कतहू नाही पापी पचिया आप कुमायण रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंद की होए विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद पगटाया दुखी अपना कीता पाया आई ना जाई रहा समाई नानक दास हर की सरनाई राग भैरो महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरी धर मोहन सगलो पावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करो।

तित्वेतित बिगरस काज रहो। ठाकर छोड़दासी को सिमरे मनमुख अंत अज्ञान हर की भगत करे नित निंदे। हर की भगत करे तिन निंदे नगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन धन सब प्रभ का सागत कहते मेरा। अहंग बोध दुर्मत है मैली बिन गुर भव जल फेरा। ओम जग जप तप सब संजम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप। पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया भैरो महला पंजवा। बन मह पेक्यो तृण मह पेक्यो ग्रह पेक्यो उदासाए दंड धार जटा धार पेक्यो वर्त नेम तीर्थाए।

को एक बखाने तो किस्त कहो दुराए अगा अगा बे अंत स्वामी न कीम कीम कीमाए जा नानक तिन के बल बल जाइए जय घट प्रगटिया इस भैरो महला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिक संचे नित डरता फिरे है निकटे हर भेद न पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़े नेड़े सब को कहे गुरमुख भेद वेला को लय राहु निकट न देखे पर ग्रह जाए दर्ब हिरे मिथ्या कर काए

सुनता बिनेत्रा कहा को पेखे ना बिना नर कही ना लेके बिन विद्या कहा कोई पंडित बिन अमरे कैसे राजमंडित बिन बुझे कहा मन ठहराना ना बिना सब जग बोराना बिन बैराग कहा बैरागी बिन हो त्याग कहा को त्यागी

कैसो ध्यान, बिन भय कथने सर्ब विकार, को नानक दर का विचार। भैरो महला पंजवा, ओमे रोग मानुको दीना, काम रोग मैं गल बस लेना।

जैसो हीरा निर्मल नाम, जास जप्त पूर्ण सब काम। रहाओ जाकी दृष्ट दुख डेरा ढाए, अमृत नाम शीतल मन गए, अनक भगत जाके।

सो जापे जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार को नानक जिस आप दयार। भैरो महला पंजवा।

सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी अजंत सब तेरे हाथ नानके प्राभ सद ही साथ भैरो महला पंज।

ओ बलिहार जाओ गुरुदेव सफल दर्थ जाकी निर्मल सेव दया करो ठाकर प्रभ मेरे गुण गावे नानक नित तेरे भैरो महला पंजवा सब ते ऊच जा का दरबार सदा सदा ताका जोहार ऊचे ते ऊचा जा का थान कोट अगा मिटे हर नाम ते सरनाई सदा सुखो ए कर कृपा जा को मेले सोए प्रभाव जा के कर्तव लखे न जाहे जा का प्रभासा सब घट माए प्रगट पया साधु कै संग भगत राधे अनदिन रंग दे दे तोट नहीं भंडार खिन मैं ताप उथप नहार जाका हुक्म ना मेटे कोए सिर पात शाह साचा सोए जिसकी ओट तिसे की आसा दुख सुख हमरा तिस ही पासा राख लीनो सब जन का पर्दा नानक तिसकी उस्तत करदा रा भैरो महला पंजवा रोवनहारी रोज बनाया बलन बर्तन को सनबंद चिताया बूझ बरैग करे जे कोए जन्म मरन फिर सोग न होए विख्या का सब तंद पसार विरले कीनो नाम आधार राव त्रै बद माया रही व्याप जो लपटानो तिस दुख संताप सुख नाही बिन नाम त्याए नाम निदान बड़ भागी पाए स्वांगी स्यो जो मन रिझावे स्वाग उतारिया फिर पछतावे मेकी छाया जैसे बर्तन हार

निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भक्त निर्वैर सो निस्तरे जो पूजै पैर आद पुरख निंदक भुलाया नानक किरत ना जाई मिटाया भैरो महला पंजवां।

सबते उत्तम हर हर काम राव। नाम हमारे मज्जन इसना, नाम हमारे पूर्ण दान, नाम लेते सगल पवित, नाम जपत मेरे भाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे त्रिपत सुभोग, नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाके मन बसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवे नाओ, भैरो महला पंजमा, निर्धन को तुम देवो तना, अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भक्त अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय कन करावन हार स्वामी।

भावे को तुम थान बैठावो, दास अपने को भक्ति लावो। नमाने को प्रभ दे तो मान, मूल मगद होए चतुर सुज्ञान। सगल भान का यो नस्या, जान अपने के हर मन बसे। पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। भैरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन बसे। संत मंडल में दुर्त सब नसे, संत मंडल में निर्मल रीत। संत संग होए एक प्रीत, संत मंडल तहा का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ राओ, संत मंडल में जन्म मरण रहे। संत मंडल में जम किचु न कहे, संत संग होए निर्मल वाणी। संत मंडल में है नाम बकाणी, संत मंडल का नह चलासन। संत मंडल में पाप बनासन, संत मंडल में है निर्मल कथा। संत संग हो में दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश। संत मंडल में हर गुणतास, संत

सरनाई जियो पावे त्यो रखो गोसाई भैरो महला पंजवा कोर मिल त्याग्यो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का ना।

आई प्रवान सफल होई जप हरि हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जप हर हरि भैरो महला पंजवा।

अपने सेव को सदा प्रतिपारे भक्तजना के सास निहारे मानस के कहो केतक बात जमते राखे देकर हाथ।

रामंत सोवड भाग्य जिसना प्यार जिसके संग तरह संसार राव सोई ज्ञानी जय सिमरेक सूतनवंता जिस बुद्ध विवेक सो कुलवंता जय सिमरे स्वामी सो पतिवंता जे आप पछाने गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रैन त्याया टूटे बंधन पूरन आसा हर के चरण रिद माहे निवास।

काम क्रोध लोभ मद निंदा सत्संग मिटिया अभिमान ऐसे संत भेटे बड़भागी नान तिन कै सद कुरबान भैरो महला पंजमा पंच मजबी चो पंच नराके मित्या रसना नित उठ भाके

मार्ग अंत काल पुछताई। तीर्थ पर में रोग न छूट से पड़या बाद विवाद पया। दुविधा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज पया। गुरमुख साचा शब्द चलाए मन साचा तिस रोग गया। नानक अर्जन अंध निर्मल इनको कर्म निशान पया। राओ भैरो महला पंतीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भैरो महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिन करते एक चल तो पाया अंधन हानि बन शब्द सुनाया। मन मुख भूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया। गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान ओ कबू ना छोडो हर का नाम। राओ पिता प्रहलाद पढ़न पटाया लै पाटी पादे कह आया।

अर्घ मिले सजाए। कहे नानक सब को करे कराया से परवान जिनी हर स्यो चित लाया भगता का अंगीकार करदा आया। करते अपना रूप दिखाया भैरो महला तीजा गोर सेवा ते अमृत फल पाया। होमे तृष्णा बुझाई हर का नाम हृदय।

हृदय सो जीवन भोगता, जिस नाम हृदय तेस सब ही जुगता, जिस नाम हृदय तिन नौ निध पाई।

आधार कोट तीर्थ जाके चरण मझार कोट पवित्र जप्त नाम चार कोट पुजारी करते पूजा कोट विसार अव न दूजा कोट महिमा जाके निर्मल हंस कोट उस्तत जाके करत ब्रह मंस कोट बालो पत निमक माए कोट गुणा तेरे गण ना जाए कोट ज्ञानी कथे ज्ञान कोट ध्यानी तत् ध्यान कोट तपीसर तपी करते कोट मनीसर मोहन मै रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया कट अंतर जामी जत का देखो तेरे वासा नानको गुर कियो परगासा पैरो महला पंजवा सत गुरमुख को कीनो दान अमोल रत्न हर दीनो नाम सहज बनोद चोज अनंता नानको प्रभ मिलियो अचिंता को नानक कीर्त हर साची बौर बौर तेस संग मन राची रहो अचिंत हमारे भोजन पाओ अचिंत हमारे लीचे नाओ अचिंत हमारे शब्द उतार अचिंत हमारे परे भंडार अचिंत हमारे कार्ज पूरे अचिंत हमारे लथे बसूरे अचिंत हमारे बैरी मीता अचिंतो ही एहो मान वास कीता अचिंत प्रभु हम किया दिलासा अचिंत हमारी पूर्णासा अचिंत हमा को सगल सिद्धांत अचिंत हमको गुर दीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मिटा अचिंतो ही प्रभ घट का डेटा अचिंत मिटे हो सगलो भरमा अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा अचिंत हमारे अनहत बाजे अचिंत हमारे गोविंद गाजे अचिंत हमारे मन पतियाना नैचल धनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजया सगल विवेका अचिंत चरिहत हर हर टेका।

कह कबीर हो पया दीवाना। बिस्मिल तामस परम कदूरी भागले पंचे होए सबूरी हिंदू त

सलता बिगरी सो सलता गंगा होई निवरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई साच प्यो अन कते न जाई राव। चंदन के संग तरब तरवर बिगरियो सो तरवर चंद्र होए निवरियो। पार्स के संग तांबा बिगरियो सो तांबा कंचन होए निवरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो सो कबीरा में होए निवरियो।

रहाओ। तोरो न पाती पूजो न देवा राम भक्त बिन नैपल सेवा। सतगुर पूजो सदा सद मनावो ऐसा सेवा।

जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बानी, भज लेहरे मन सारग पानी। अब न भजस भजस कब पाई, आवे अंत न भजया जाई, जो किछ करहै सोई अब सार, फिर पछताहो न पावो पार।

मरमरै निज पद ऊपर लागो ध्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ मूल द्वारे बंधे अबंध रव ऊपर गह राख्या चंद पश्चिम द्वारे सूरज तपै मेर दंड सिर ऊपर बसै।

सो सुरतान जो दय सरतान बाहर जाता पीतर आने गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान छत्र सिर तरह।

कहत कबीर हौ कहो पुकार, समझ देख साकत गवार। दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले।

ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमर है दुख पंजना रहाओ। जब लग सिंह है बन माहे।

जाए, केवल राम रहो लिव लाए, असत्तर सै सलार है जाके, सवा लाख पैका पर ताके, सेख जो कहिए कोट अठासी, छपन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब को की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे रहाओ, 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लख फिरे दीवाना, बाबा आदम को किछ

रोस है ले ओई, अपना किया आपे सोई। तुम दाते हम सदा भिखारी, दियो जवाब होए बजगारी। दासू कबीर तेरी पनह समाना, पिस्त नजीक राख रहमाना। सब कोई चलन कहत है ऊहा, ना जानो बैखुंट है कहाँ रहाओ। आप का मरम न जाना, बातन ही बैकुंठ बखाना। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास। खाई कोट ना परल पगारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा। कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। क्यों लीजे गंठ पंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई रहाओ। पांच पचीस मोहम्मद।

रहे कट पीतर एहो काड लियो ना जाई। प्रेम प्लीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया भ्रम अगन सहजे पर जाली एक है चोट सिजाया। सत संतोख ले लरने लागा तेरो दोए दरवाजा साध संगत अर गुर की कृपा ते पकरियो गढ़ को राजा। भगवत पीर सकत सिमरन की कटी काल कै फांसी दास कमीर चढ़ो गढ़ ऊपर राज लियो अभिनासी। गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर। मन न डिगे तन काहे को डराए चरण कमल चित रहो समाए रहाओ। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृग छाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग ना साथ जल थल राखन है रघुनाथ। पैरो कबीर ज्यो अष्टपदी कर।

अनहद शब्द होत चुनकार, ज्यो पौड़े प्रभ श्री गोपाल। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रय अस्थान तीन त्रय खंडा। अगम गोचर

कोट महादेव अर्क बिलास दुर्गा कोट जाके मर्दन करे ब्रह्मा कोट वेद उचरे जो जाचो तो केवल राम आन देव सो नाही काम रहाओ कोट चंद्र में करह चक्राक सुर तेतीस जे वह पाक

जब स्थर समुंद्र कोट जाके पानी हार रोमावल कोट अठारह पार कोट कमेर पर है पंडार कोटिक लिखमी करे सीगार।

गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट सबै गुण कहे, तव पार ब्रह्म का अंत न लह। बावन कोट जाके रोमावली, रावण सेना तह ते छली। सहस कोट बहु कहत पुराण, दुर्योधन का मिथ्या मान। कंद्रप कोट जाके लवे न तर है, अंतर अंतर समंसा हर है। कह कबीर सुन सारिग पान, देह अभय पद मांगो दान।

करते आए रहाओ। मिथ्या जिह्वा अवरे काम निर्वाण पद इक हर को नाम असंख कोट अन पूजा करी एक न पूजस नामे हरि। प्रणवे नाम दियो इहो करना अनंत रूप तेरे नारायणा पर तन पर दारा पर हरि ताके निकट बसे नर हरि।

पानी, दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पति आए, नाही ता कर को बाप रसाए रहाओ। सोयना कटोरी अमृत परी, लैना में हर आगे तरी, एक भगत मेरे हृदय बसै, नामे देख नारायण हसै।

रच रच ताको करो सिगार, भले निंदो भले निंदो लोग, मन तन राम प्यारे जोग रहाओ। बाद विवाद कहूं स्यो न कीजै, रसना राम रसायन पीजै। अब जिए जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्तत निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग भेटल सोई।

पर नारी सो काले तंदा जैसे सिंबल देख सुआ बिगसाना अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कर अग्ने माहे जलत रहे मिटवे कब नाहे रहाओ। हर की भगत न देखे जाए मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूल हो पुला आवे जाए अमृत डार ला।

दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया करसह औद कनेरी गेर तर जल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़क काल के पै को प्यो मोहे बताओ जो तोहे राखे पीत पिताम्बर त्रिभवन तणी थंब माहे हर पाखे हर नाखस जिन नखे बिदार्यो सुर नर किए सनाथा कह नाम दियो हम नर हर त्यावे।

जब बीती सुनी अजु न आयो त्रिभवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरुड़ चढ़े गोविंद आयला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह तरण एकोडी करो

जय गुरुदेव सदा बैरागी, जय गुरुदेव पर निंदा त्यागी, जय गुरुदेव बुरा भला एक, जय गुरुदेव लाटे लेख, जय गुरुदेव कंध नहीं हिरे, जय गुरुदेव देहरा फिरे, जय गुरुदेव ता छापर छाई, जय गुरुदेव सहज निकसाई, जो गुरुदेव ता अठसठ नाया, जो गुरुदेव तीन तीन चक्र लगाया, जो गुरुदेव द्वादश सेवा, जो गुरुदेव सब विख मेवा, जो गुरुदेव ता संसार टूटे, जो गुरुदेव ता जम ते छूटे, जो गुरुदेव ता पव जल तरे, जो गुरुदेव ता नाम जन्म ना मरे, जो गुरुदेव ता पव जल तरे, जो गुरुदेव ता जन्म न मरे, जो गुरुदेव अठ सठ अठ दस व्योहार, जो गुरुदेव अठारह पार, बिन गुरुदेव अवर नहीं।

सपत पयाला चमर कोस का मंदर तेरा एहबिद बने गोपाला छपन कोट का पेहन तेरा सोलह सहस इजारा पार अठारह मुदगर तेरा सह नक सब संसारा देही महजद मन मौलाना सहज निवाज।

सतगुरु मिला भय करे सार, बिखो में ममता पर हराए, सब दुख बिना से राम राय। उत्तम गत मित हर गुण शरीर, गुरमत प्रगटे राम नाम हीर। लिव लागी नाम तज दूजा पाओ, जन नानक हर गुर गुर मिलाओ। बसंत महला पहला, मेरी सखी सहेली सुनहो पाए, मेरा पिर रिसालू संग साए। ओ लख न लखिए कहो हो काए, गुर संग दिखायो राम राय। मिल सखी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर का मन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दोहागण नाह पेओ। ओह घट घट रावे सर्ब प्रेओ, गुरमुख थिर चीने संग देओ। गुर नाम दड़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए। गुर मन मार्यो कर संजोग, एहन सरावे भगत जोग। गुर संत सबा दुख मिटै रोग, जन नानक हर वर सहज जोग।

नाथ मत बिसरस रे मन राम बोल अपरंपर अगम अगोचर गुरमुख हर आप तुलाए अतुल तोल रहाओ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर।

बसंत महला तीजा एक तुका साहिब भावे सेवक सेवा करे जीवत मरे सब कुल उधरे तेरी भगत न छोड़ो क्या को हसे साच नाम मेरा हृदय वसे रहाओ जैसे माया मोहे प्राणी गलत रहे तैसे संत जन राम नाम रवत रहे मैं मूर्ख मुग्ध

राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला, राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला, काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची ढैग दिवाल काहे गच लावो, रहाओ कर हर हट माल टिंड परोवो, तिस पीतर मन जोगो, अमृत सिंचो परो क्यारे त्यो माली के होवो, काम क्रोध दोय करो बसोलो, गोढ़ो धरती पाई, जो गोढ़ो त्यो तुम सुख पावो।

करो बिचारो। स्वामी पंडिता तुम देहो मति, किन विद पावो प्राण पति रहाओ। पीतर अगन बनास्पत मौली, सागर पंडय पाया। चंद सूरज दोय कर ही पीतर, ऐसा ज्ञान न पाया। राम रवंता जानिए इक माई भोग करे, ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रहे। कहया सुने न खाया मान है, तिन्हा ही सेती वासा। प्रणवत नानक दासन दासा, खिन तोला खिन मासा। बसंत हिंडोल महला पहला, साचा साहो गुरु सुखदाता। हर मेले भुख गवाए, कर कृपा हर भक्त दड़ाए। आन दिन हर गुण गाए, मत भूलो रे मन चेत हरी। बिन गुरमुक्त नाही त्रैलोई, गुरमुख पाइए नाम हरी रहाओ। बिन भक्ति नहीं सतगुर पाइए, बिन भागा नहीं भक्त हरी। बिन भागा सतसंग न पाइए, कर मिले हर नाम हरी। घट घट गुप्त उपाय वेखे, प्रगट गुरमुख संत जना। हर हर करह सो हर रंग पीने, हर जल अमृत ना मना। जिनको तख्त मिले वड्याई, गुरमुख से प्रदान किए। पारस भेट भये से पारस, नानक हर गुर संग थिए। बसंत महला तीजा, घर पहला दो तुके एक ओंकार। सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत, जित हरिया सब जीय जंत। क्या हो आखा किरम जंत, तेरा किने न पाया आद अंत। तै साहिब की कर

करे कराए जोत सपावै तिसै खवाए नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे। भिख्या की वासना मन है करे अपना पाणा आप करे। बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यो पावे त्यो राखे सोए गुर गोपाल मेरे मन पाए रह न सको दर्शन देखे बिन सहज मिलो गुर मेल मिलाए रहाओ। एह मन लोभी लोभ लुभाना राम बिसार बहुर पछताना बिछरत मिलाए गुर सेव रांगे हर नाम दियो मस्तक वड भागे। पौन पानी की एह देह सरीरा होमे रोग खटेन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदिया अग्नि तन चारे तृष्णा जलत जले अहंकारे गुर राखे वड भागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे। बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे ना होवे सोग मनमुख मुए नाही हर मन माहे मर मर जम है भी मर जाहे। से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साच समाहे रहाओ। हर न सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पव है सिर पाव है तूर हर आपे जन लिए लाए तिन सदा सुख है तिल ना तमाए। नदर करे चूके अभिमान साची दर्घ है पावे मान हर जियो वेखे सद हजूर गुर के शब्द रहया भरपूर जिए जंत की करे प्रत

अंतर पूजा मनते होए एको वेखै और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुरु मैनो एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत एहो मन मौलिया गाए गुण गोबिंद रहाओ गुरु पूछो तुम करो बीचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ हो है दासत पाए तव जग जीवन वसे मन आए भगत करे सद वेखे हजूर मेरा प्रभ सद रहया भरपूर इस भक्ति का कोई जाने पेओ सब मेरा प्रभ आत्म देओ आपे सतगुर मेल मिलाए जग जीवन स्यो आप चित लाए मन तन हरिया सहज सुपाए नानक नाम रहे लिवलाए बसंत महला तीजा भगत वचल हर वसे मन आए गुर कृपा ते सहज सुपाए भगत करे विचो आप खोए सद तद ही साच मिलावा होए भगत सो है सदा हर प्रभ द्वार गुर कहेत साचे प्रेम प्यार रहाओ भगत करे सो जन निर्मल होए गुर सब दी विचो हमें खोए हर जियो आप वसे

सोई करे जे हर जियो पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुपाए नानक नाम वसै मन आए। बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुर पाए सफल्यो बिरख हर के द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाए सच फल लागे।

सफल जन्म इस जग में आया, साच नाम सहज समाया। गुरमुख कार करो लिव लाए, हर नाम से वो विचो आप।

रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच सोए। बसंत महला तीजा। नाम रते कुला का कर है उदार, साची बाणी नाम प्यार। मनमुख भूले काहे आए, नाम हो भूले जन्म गवाए। जीवत मरे मर मरण सवारे, गुर के शब्द साच उर तारे। रहाओ गुरमुख सच भोजन पवे।

कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप वसै मन आए निश्चल मत सदा मन तीर हर गुण गावे गुणी गहीर नाम हो भूले मरे बिख खाए वृथा जन्म फिर आवे जाए रहाओ बहु भेख करे मन शांत न होए बहु अभिमान अपनी पत खोए सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया बाहर जादा घर में आणिया घर में वस्त अगम अपारा गुरमत खोजे शब्द बीचारा नाम नव निध पाई कर ही माहे सदा रंग राते सच समाहे आप करे किच करण न जाए आपे पावे लय मिलाए तिस्ते नेड़े नाही को दूर नानक नाम रहया परपूर बसंत महला तीजा गुर सब्दी हर चेत सुभाए राम नाम रस रहे अगाए कोट कुटंतर के पाप जल जाहे जीवत मरह हर नाम समाहे हर की दात हर जियो जाने गुर के शब्द एह मन मौल्या हर गुण दाता नाम वखाने रहाओ भगवै वेस भ्रम मुक्त न होए बहो संजम सांत न पावे कोए गुरमत नाम प्राप्त होए वडभागी हर पावे सोए कलम है राम नाम बड़े आई गुरपुरे ते पाया जाई नाम रते सदा सुख पाई बिन नामे होमे जल जाई वडभागी।

गुरमत खोज परे तब पकरे तन साबत रास उबरया। पाखंड परम उपाव कर था के रिद अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया।

तुम वड पुरख वड अगम गुसाई हम किरे किरम तुम नचे हर दीन दयाल करो प्रभु कृपा गुर सतगुर चरण हम बंछे गोविंद जियो सत्संगत मेल कर कृपछे जन्म जन्म के किलविख मल भरया मिल संगत कर प्रभ हंछे रहाओ तुमरा जन जात अविजाता हर जप्यो पतित पविछे हर कियो सगल पवंते ऊपर हर सोबा हर प्रभ दिंछे जात अजात कोई प्रभ त्यावे सब पूरे मानस तिंछे से तन वडे वड पूरे हर जन हर से तन वडे वड पूरे हर जन जिन हर तार्यो हर उर्छे हम डीडे डीम बहुत अत पारी हर तार कृपा प्रभ मिलछे जन नानक गुर पाया हर तूठे हम किए पतित पविछे बसंत हिंदोल महल्ला चौथा मेरा इक खिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गीदे जो बारिक रसक परयो थान माता धन काडे बिलल बली दे गोविंद जियो मेरे मन तन राम हर बीदे वडे

जन जप्यो नाम हर निरंजन नरहर उपदेश गुरु हर प्रीथे जन्म जन्म की हमे मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्म न बिचरो ठाकुर तुम प्याज रखो अपनी दे हर पावे सुन बिनो बेंती जन नानक सरन पवी दे। बसंत हिंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुतावे तिल कर नहीं वासा पाईए गुर अंकस शबद दारू सिर तारियो कर मंदर आण वसाईए गोबिंद जियो सत्संगत मेल हर त्याईए होमे रोग गया सुख पाया हर सहज समाद लगाईए रहाओ कर रतन लाल बहुमानक लादे मन प्रम्या लह न सकाईए जो उडा कूप गोहज खिन काडे त्यो सतगुर वस्त लहाईए जिन ऐसा सतगुर साध न पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाईए मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कृपा गुरु मिलाईए जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाईए। बसंत हिंडोल महला चौथा आवण जान पया दुख बिख्या देह मनुख सुंजी सुंज राम नाम खिन पल नहीं चेत्या जम पकरे नाल सुलंज गोबिंद जियो बिख होमे ममता मुंज सत्संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुंज रहाओ सत्संगत साध दया कर मिलो शरणागत साधु सुंज हम डुबदे पाथर काढ़ लिहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्तत तारो रिद अंतर स्वामी सत्संगत मिल बुद्ध लंज हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटो कुम वंज जिनके पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लंज जन नानक मंतन अनद प्या है गुर मंत्र दियो हर पंज। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओंकार सत गुर प्रसाद गुर सेवो कर नमस्कार आज हमारे मंगल।

मन तन मौल्यो अत अनूप सुके नाही छाव तूप सगली रुति हरिया होए साध बसंत गुर मिले देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लागे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुण है गाए जन नानक हर हर हर त्याए बसंत महला पंजवा हटवाणी तन माल हाट कीत जुआरी जुए माहे चीत अमली जीवे अमल खाए त्यो हर जन जीवे हर त्याए अपने रंग सबको रचे जित प्रभ लाया तित तित लगे रहाओ मेघ समय मोर नृत्यकार चंद देख बिगसे कोलार माता बारिक देख आनंद त्यो हर जन जीवे जप गोबिंद सिंह रुचे सद भोजन मास रण देख सूरे चित उलास किरपन को अत तन प्यार हर जन को हर हर आधार सर्व रंग एक रंग माहे सर्व

जैसे उदारन गुरह पीर, तुम दाते प्रभ देन हार, निमख निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसे प्रापत साध संग, तिस जन लागा पा भ्रम रंग, ते बंधन ते पए मुक्त भगत अराध्य जोग जुगत। नेत्र संतोख दर्श

परे। जिन तू सेव्या सुखी से संत शरण नानक परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बसंत महला पंजवा जस बोलत मुख पवित्र होए जस सिमरत निर्मल है सोए जस आराधे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहै राम नाम बोल राम राम त्यागो मन के सगल काम रहाओ जिसके तारे तरण आकाश काट काट जिसका है प्रगास जिस सिमरत पतित पुनीत होए अंतकाल फिर न रोए सगल तरण

गोबिंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत सच नाही फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना सो सदा संग रहाओ। संत जनी की उपदेश, जह गोबिंद भगत सो धन देस। हर भक्तहीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान। हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग। निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कारज सार। चरण कमल से लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ दीनो दान। तेरे संत जना की बाछो तूर, जप नानक स्वामी साध हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेसर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप। जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई इक मन इक पाए। गुर पूरे की सदा सरनाई, साचे साहेब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके। बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दसंतर रहे ताए। किरत उना का मिटह ना है, ओए अपना बीजा आप खाहे। जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच न सकत सकोए। प्रभ दास रखे कर जतन आप, अखंड पूरन जाको प्रताप। गुण गोबिंद नित, गुण गोबिंद नित रसन गाए। नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया। पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूरन काम। जप जीवे नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवे, बिन सतगुर दीजे बिल लाती। साकत फिर आवे जावे रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास। पैविन से निर्पय पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूरा नास। जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। आस्त सिद्ध नव निध देहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे। प्रभ जप जप जीव है तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा, कर पहला एक तुके एक ओंकार। सत गुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया। तुम रभो गोबिंद रवण जोग, जित रव्या सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नजर निहालिया, अपना दास आप संभालिया। सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी। मेरा गुण अवगुण न बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया। बसंत महला पंजवा, खिल विख विन से गाय गुना। आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौल्यो हर चरण संग। कर कृपा साधु जन पेटे, नित नित रातो राम रंग रहाओ। कर कृपा प्रत्ये गोपाल, लड़ लाए।

ताप, बालक राखे अपने कर थाप। शांत सहज ग्रह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए कल्याण। रूप जप हर हर मंत, रहाओ शोक संताप। कटे प्रभ आप, गुर अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाओ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ। नानक भक्ता भली रीत, सुखदाता जप दे नित नीत। बसंत महला पंजवा, हुकम कर कीने निहाल। अपने सेवक को पया दयाल, गुर पूरे सब पूरा किया। अमृत नाम रिद मह दिया रहाओ। करम धरम मेरा कछ ना बिचार्यो, बहा पकर पव जल निस्तार्यो। प्रभ काट मैल निर्मल करे, गुरपुरे की सरनी परे। आप कर है आप करने हारे, कर कृपा नानक उधारे।

लागे। तुम मिलो प्रभ सभागे, हर चेत मन मेरे रहाओ। सगन बास फूले इक रहे, सूख कंटूले। बसंत रुत आई पर फुलता रहे। अब कलू आयो रे इक नाम बोगो बोगो, आन रुत नाही नाही मत परम भूलो भूलो। गुर मिले हर पाए, जिस मस्तक है लेखा मन रुत राम रे। गुन कहे नानक हर हरे हर हरे, बसंत महला पंजवा कर दूजा हिंडोल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्र, मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाए। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख वैसो सभा विशाए। इन विद पासा ढालो बीर, गुरमुख नाम जब हो दिन राती। अंतकाल नह लागे पीर रहाओ। करम धर्म तुम चौपड़ साझो सत, करो तुम सारी। काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी। उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे। बिखड़े दाओ लंगावे मेरा, सतगुर सुख सहज सेती कर जाते। हर आपे खेलै आपे देखै, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेलै, सो जना बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करह मेरे प्यारे, सोई तुझे पछाणै।

न तू रंग तरता, तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समरथ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा। तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरे तेरा है पाणा। कहो नानक तह पहया द्वारे, रख ले वो मुकद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजमा, मूल न बूझे आप न सूझे। परम व्यापी अहंगमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ तनी। मोहे निस्तारो निर्गुनी, रहाओ उपत परलो प्रभ ते होवे। एह बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंगराते। कलम है सुखिए से गनी, अवर उपाओ न कोई

एको धर्म जड़ै सच कोई गुरमुख पूरा जुग जुग सोई अनहद राता एक लिवतार ओ गुरमुख पावै अलख अपार। एको तख्त एको पातशाह हो सर्वी थाई वे परवाह हो तिसका किया त्रिपवन सार ओह अगम गोचर एकंकार। एका मूरत साचा नाओ तिथे निबड़े साच न्याओ साची करनी पत परवान साची दरघै पावे मान। एका भगत एका है पाओ बिन पै भक्ति आवो जाओ गुरते समझ रह मेहमान हर रस राता जन परवान। इत उत देखो सहजे रावो तुझ बिन ठाकुर किस न पावो नानक हुक्म हमें शब्द जलाए सतगुर साचा दर्श दिखाए।

सब उत्तम किस आखो हीना हर भक्ति सच नाम पतीना रहाओ औखदकारी थाकी बहतेरे क्यों दुख चुके बिन गुर मेरे बिन हर भक्ति दुख कनेरे दुख सुख दाते ठाकुर मेरे रोग वडो क्यों बांधो तीरा रोग बुझे सो काटे पीरा मैं अवगण मन माहे शरीरा ढूंढत खोजत गुर मेले पीरा गुर का शब्द दारू हरनाओ जो तू राखे तिवे रहाओ जग रोगी कह देख दिखाओ हर निर्मायल निर्मल नाओ कर मह कर कर मह कर जो देख दिखावे गुर महली सो महल बुलावे मन मन मह मनुआ चित्त मह चीता ऐसे हर के लोग अतीता हर्ष सोगते रह निरासा अमृत चाख हर नाम निवासा आप छान रह लवलागा जन्म जीत गुरमत दुख पागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहज मरो जीवत ही जीवो अपनो कर राखो गुर पावे तुमरो होए सो तुझे समावे भोगी को दुख रोग ब्यापे घट घट रव रहया प्रभ जापे सुख दुख हीते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता वसंत महला पहला इक तुखिया मत भसम अंधले गर्भ जाहे जिन विद नागे जोग नाहे मूड़े काहे बिसारे ते राम नाम अंतकाल तेरो आवे काम रहाओ गुर पूछ तुम करो विचार जह देखो थे सारंग पान क्या हो आखा जा कछु नाहे जात पत सब तेरा नाए काहे माल दर्ब देख गर्भ जाहे चलती बार तेरो कछु नाहे पंच मार चित रखो ताए जोग जुगत की एह पाए हमे पैखड़ तेरे मने माहे हर न चेते मुड़े मुक्त जाहे मत हर विसरिया जम बस पाहे अंतकाल मुड़े चुट खाहे गुर शब्द बिचारे आप जाए साच जोग मन वसे आए जिन जियो पिंड दिता तिस चेते नाहे मड़ी मसानी मुड़े जोग नाहे गुण नानक बोले भली बाण तुम हो सुजाखे लेहो पछाण बसंत महला पहला दुविधा दुर्मत अंधलीकार मनमुख पर मैं माज गुबार मन अंधला अंधली मत लागे गुर करनी बिन परम न पागे रहाओ मनमुख अंधले गुरमत न पाई पशु पए अभिमान न जाई लख चौरासी जंतु पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर ज समाए सगली भूले नहीं शब्द अचार सो समझे जिस गुर करतार गुर के चाकर ठाकुर पाणे बक्स लिए नाही जमकाणे जिनके हृदय एको पाया आपे मेल परम चुकाया बेहमताज बेअंत अपारा सच पतीजय करने हारा।

सी पवरा बासले तरवर फूले वन हरे रहाओ। आपे कवला कंत आप आपे रावे शब्द थाप आपे बछरू गौ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करणी करणहार आपे गुरमुख कर बीचार तू कर कर देखा करणहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकल निरंजन परम हीर तू आपे

नानक त्रापे हर नाम सोआए, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। बसंत हंडोल महला पहला, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाव सत चौदह तीन चार, कर महलत चार बहाली, चारे दीवे चौहो हथ दिए एका एका वारी। मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सख्त तुम्हारी रहाओ। कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी। धरती देग मिले इक बेरा, भाग तेरा भंडारी। ना साबूर होवे फिर मंगे, नारद करे खुआरी। लब अंधेरा बंदी खाना, औगण पैर लोहारी। पूंजी मार पवे नित मुदगर, पाप करे कोटवारी। भावे चंगा भावे मंदा, ऐसी नजर तुम्हारी। आद पुरखो अल्हो कहिए, सिंखा आई वारी। देवल देवत्या कर लागा, ऐसी कीरत चाली। पूजा बांग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी। कर कर मिया सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी। जे तू मीर महीपत साहेब, कुदरत कौन हमारी। चारे कुंट सलाम करेंगे, कर कर सिफत तुम्हारी। तीरथ सिमरत पुन दान किछ, लाहा मिले दिहाड़ी। नानक नाम मिले वड्याई, मेका घड़ी संभाली। बसंत हिंडोल कर दूजा, कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काया नगर एक बालक वस्या, खिन पल थिर न रहाई। अनेक पाव चतन कर थाके, बारंग बार परमाई। मेरे ठाकुर बालक इत कर आण, सतगुर मिले त पूरा पाईए। भज राम नाम निशान रहाओ। ओह मृतक मड़ा सरीक है, सब जग जित राम नाम नहीं वसया। राम नाम गुर उदक चोआया, फिर हरिया होआ रसया। मैं निरखत निरखत शरीर, सब खोजा इस गुरमुख। चलत दिखाया बाहर खोज, मुए सब साकत। हर

हर कृपा लड़ले हो लाए नानक दास प्रभ की शरणाए बसंत की वार महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ते आई के हो हरिया पाई किरम लखन ते पाई है एहो रत सहाई वाण त्रिण त्रि पवन मौल्या अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई पंजे बदे महाबली।

जाग संघी चोर कर मुसन लाग रहाओ। जागे सुखदेव अर अंकुर हणवंत जागे तर लंकूर। शंकर जागे चरण सेव कल जागे नामा जय देव। जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागे सोई सार। इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम। जो एक सम है जाया पूत बाप खेलाया। बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ। सुत मकलाई अपनी माओ रहाओ। पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खेर खेर हासता। निंद्रा बिन नर पैसो वे बिन बासन खीर बलोवे। बिन अस्थन गौल वेरी पैडे पैडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पढ़न साल संग सखा भो लिए बाल। सो मोको कहाँ पड़ावस आल जाल मेरी पटिया लिख देहो सरी गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न से नहीं काम रहाओ। संडे मर के कहो जाए प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम खन की छोड़ बान तुझ तुरत छोड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहा सतावो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार। इक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार। काड खड़क को प्योर साए तुझ राखन हारे मोहे बताए। प्रभ थम ते निकसे कै विस्थार हर नाखस छेद्यो नख बिदार। ओए धर्म पुरख देवा देव भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे न पार प्रहलाद उधारे अनिक बार। इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर। मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बिगोतो मैं को आहे। माधो दारन दुख सहयो न जाए मेरो चपल बुद्ध सेव कहा बसाए रहाओ। सनक सनंदन शिव सुकाद लाभ कमल जाने ब्रह्माद। कब जन जोगी जटातार सब आपन औसर जले सार। तू अथाह मोहे थाह नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे। मोरो जनम रन दुख आस तीर सुख सागर गुन रहो कबीर। नानक एक बन जारे पाच बर्द पचीसक संग काच। नौ बहिया दस गोन आहे कसन बहत्तर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनस ज्यो नहीं काज जह कटे मूल नित बड़े बिला ब्याज। रहाओ सात सूत मिल बनज कीन करम पावनी संगलीन। तीन जगाती करतरार चलो बंजारा हाथ चार। पूंजी हिरानी बनज टूट दहत से टाडो गयो फूट। कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माता झूठी पिता भी झूठा झूठे सब फल लागे। आवे झूठे जाहे भी झूठे झूठे मरहे अपागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ जहां बैस हो भोजन खाओ। रहाओ जिहवा झूठी बोलत झूठा कर नेत्र सब झूठे। इंद्री की झूठ उतरस नाही ब्रह्म अगन के लूठे। अगन की झूठी पानी झूठा झूठी बैस पकाया। झूठी करछी परोसन लगा झूठे ही बैठ खाया। गोबर झूठा चौंका झूठा झूठी दीनी कारा। कह कबीर तेई नर सूचे साची परी विचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कत जाइए रह कर लागो रंग मेरा चितना चले मन पयो पंग। रहाओ एक दिवस मन पई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली भ्रम ठाए सो भ्रम बितायो गुर मन ही माहे। जहाँ जाइए तै जल पखान तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए उहां तो जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काटे कोट करम। बाणी बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै चरंकाल ना जीवै दो कुल लजै। तेरी भक्त ना छोड़ो भावे लोग हसै।
चरण कमल मेरे हीरे बसें रहाओ, जैसे अपने तन्हे प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छांडे। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप भी थुला रहाओ। अनिल बेड़ा हो खेव न साको, तेरा पार न पाया बीतला। हो दयाल सतगुर मेल तू मैं को, पार उतारे केसवा। नामा कह हो तार भी न जानो, मैं कहो बह देह बीतला। सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती, पीछे तिनका कोलर हांकती। जैसे पनकत टूटट खांकती, सर धोवन चाली लाडुली रहाओ। धोबी धोवै बिरह बिराता, हर चरण मेरा मन राता। पणत नाम दो रम रहया, अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाहे, पहरावा देखे उब जाहे। गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। तू काए गर्भ है बावली, जैसे पादो खूब राज तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ। जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध ढूंढे परदेस। अप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंक